0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਵਜ਼ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵੈਸ਼ਨਵੀ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों

0: को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वनकर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरिया पालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ज्ञान अमृत।

अयोध्या से आई बारात की चहल पहल जनकपुर में चहुं ओर दिखाई दे रही है। हेमंत ऋतु, अगहन का सुहावना महीना, ग्रह तिथि, नक्षत्र योग तथा शुभ दिन सभी अनुकूल होकर जब एकत्र हुए तो स्वयं ब्रह्मा ने लग्न पत्रिका बनाकर मुनिवर नारद के हाथों से राजा जनक के पास भिजवाया। शुभ मुहूर्त आया देख राजा जनक की नगरी में मंगल वाद्यों की ध्वनि गूंज उठी।

0: पञ्चशताधिकाः व्याघ्राः सन्ति, तेषु अधिकांशतः कुनो राष्ट्रिय उद्याने वसन्ति। भारतम् अद्यारभ्य नवदिल्ल्यां ब्रिक्स राष्ट्राणां राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदातॄणां द्विदिवसीय सम्मेलनस्य आयोजनं करोति। अस्य अध्यक्षताम् अजीत डोभालः करिष्यति। नीट यूजी षड्विंशत्युत्तर द्विसहस्र पुनर्परीक्षा सुदृढ सुरक्षा व्यवस्थायां सुसम्पन्ना। राष्ट्रिय परीक्षा अभिकरणस्य अनुसारेण देशे विदेशे च स्थितेषु चत्वारिंशदधिक चतुश्शतोत्तर पञ्चसहस्र परीक्षा केन्द्रेषु लक्षशः अभ्यर्थिनः सहभागिनः अभवन्। दिव्यांग अभ्यर्थिभिः सह सर्वेषां परीक्षार्थीनां सुविधार्थाः विशेषव्यवस्थाः अपि कृताः। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इत्यनेन द्वादश श्रेण्याः उत्तर पुस्तिका सत्यापनस्य पुनर्मूल्यांकनस्य च परिणामाः क्रमशः प्रकाशिताः। मण्डलेन प्राप्तेषु उक्तं यत् प्राप्तेषु आवेदनेषु नामाः घोषिताः सन्ति। अवशिष्ट परिणामाः अपि शीघ्रमेव चरणबद्धरीत्या प्रकाश्यन्ते। छात्राः स्व आवेदनस्य स्थितिं डिजी लॉकर पटले परीक्षितुं शक्नुवन्ति। मण्डलेन निष्पक्षतां शुद्धतां च सुनिश्चित्य सर्वाः प्रक्रियाः सावधानतया सम्पन्नाः इति उक्तम्। छात्राः मिथ्या प्रचारेषु सामाजिक माध्यमेषु प्रसारितान् अप्रमाणिक सन्देशान् च न विश्वसन्तु इति केवलं CBSE इत्यस्य आधिकारिक सूचनाः एव अनुसरन्तु इति परामर्शः दत्तः। तमिलनाडु राज्यस्य पेरियापालम क्षेत्रे स्थितायां समुद्री खाद्य निर्यात समवाये अमोनिया वायोः स्रवण घटनायां सप्त जनाः मृताः, सप्तत्यधिकाः श्रमिकाश्च प्रभाविताः जाताः। घटनास्थले उत्थार चिकित्सा कार्याणि निरन्तरं प्रचलन्ति। राष्ट्रिय आपद्मोचन बलस्य तथा रासायनिक जैविक परमाणु आपदा विशेष दलानां च सदस्याः त्वरितम् आपद उत्थार अभियानम् आरब्धवन्तः। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः उच्चस्तरीय अन्वेषणस्य आदेशं दत्त्वा त्रिसदस्यीयां समितिं नियुक्तवान्। फीफा विश्व कप चषके केप वर्डे उरुग्वे च अनयोः दलयोः स्पर्धा तत्र द्वि द्वि अंकेन समतायाम् अभवत् इति वार्ता।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 7 बज चुके ने, हुण तक दी मुख खबरां सुनो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता विच स्वदेशी तौर ते बने समुद्री फौज दे 3 जहाज राष्ट्र नूं समर्पित कीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जबलपुर विच राणी दुर्गावती यूनिवर्सिटी दे 36वें कॉन्वोकेशन विच शिरकत कीती। राष्ट्रपति ने आदिवासी समूहां, पछड़े वर्गां ते महिलावां दे शक्तिकरण लई सिख्या दी महत्ता ते जोर दित्ता। केंद्रीय वणज ते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ते यूरोपियन यूनियन विचकार मुक्त व्यापार समझौते ते इस साल दिसंबर तक दस्तखत होण दी उम्मीद है। महाराजा रणजीत सिंह की बरसी मौके पाकिस्तान स्थित इतिहासिक गुरधामा के दर्शनों लिए 290 श्रद्धालुओं का जत्था कल पाकिस्तान लिए रवाना होया। पंजाब सरकार वालों वित्तीय साल 2025-26 दौरान बुजुर्गों लिए चलाई गई वख-वख भलाई गतिविधियों में बुजुर्गों की कुल हिस्सेदारी का आंकड़ा 111,000 तो वध रिकॉर्ड किया गया। पंजाब सरकार वालों 24 जून को मोहाली स्थित MET यूनिवर्सिटी विखे NRI मिलनी 2026 का आयोजन किया जा रहा है। अमेरिका ते ईरान विचकार अंतरिम समझौते नूं मजबूत करन ते पछमी एशिया टकराव नूं खत्म करन दे उद्देश नाल स्विट्जरलैंड दे बर्गने स्टॉक विच गलबात शुरू हो गई है। हॉकी विच भारत ने ऑकलैंड विच न्यूजीलैंड नूं 2-0 नाल हरा के अपना दूजा FIH महिला नेशनस कप खिताब जीत लिया है। क्रिकेट विच भारत ए ने दांबूला विच 3 देशों की लड़ी के फाइनल मुकाबले विच श्रीलंका ए नूं 66 दौड़ां नाल हरा दिता है। ये सन हुण तक दीआं मुख खबरां। अगलियां मुख खबरां तुसीं सुणोगे सवेरे 9 बजे ते आकाशवाणी जलंधर ते हुण प्रोग्राम सोनी सवेर।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। इंग्लैंड की धरती ते भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोला की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक।

0: बहुत वधिया मिल रहा है क्योंकि सब तो पहला तो यह है कि डिपार्टमेंट्स का जिहड़ा मेजर एक्सपेंसेस है वो उन्हां दे रिड्यूस हो जाएंगे, वो घट जाएंगे। सब तो जिहड़ा कि हर एक कोई भी डिपार्टमेंट आ उन्हां दा मेजर एक्सपेंस ही इलेक्ट्रिसिटी का होंदा है।
1: जी
0: भी वो किदा मतलब कि उन्हां नूं काफी कई डिपार्टमेंट सानूं वेखण नूं मिले कि भी उन्हां दे काफी मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बिल काफी मंथ्स तो पेंडिंग पे सीगे। जी सानू भी देख के बड़े हैरान लगा कि भी इन्हें इन्हें बिल्स किवें इकट्ठे हो सकते हैं, बट
1: जी
0: काफी इन्हों नू रिलीफ बहुत वड्डी रिलीफ मिलेगी डिपार्टमेंट्स में जदों
1: जी
0: भी प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाएंगे। जी सर,
1: शुभकर्मन जी, ये दसो कि ये जिस टेक्नोलॉजी दे नाल जिहड़े सोलर पैनल्स और ये सोलर इंस्टॉलेशन की जा रही है, ये टेक्नोलॉजी किदां दी है और इहदा जिहड़ा रख रखाव का खर्चा है कितने ये तो नहीं बहुत ज़्यादा होएगा जी?
0: सर इस तरह है हुण तां काफ़ी मतलब कि चेंज आ गया टेक्नोलॉजी दे विच, काफ़ी वधिया हो चुकी है, बहुत ही लो एरा ऑपरेशनल कॉस्ट ने, कोई ना ज़्यादा कोई कोई है नहीं गए इनकी मेंटेनेंस का खर्चा कोई ना ज़्यादा नहीं हैगा। सो सब तो वड्डी गल ये है कि भी जिहड़ी ग्रिड नू बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलती है दे विच जदों कि प्लांट जदों इंस्टॉल हो जाते हैं, काफी मतलब कि जिवें कि रिड्यूस होंदी है इन्हां दा जिहड़ा ब्लैकआउट दा रिस्क है ओह घट जांदा है। जिवें कि हुण आपां देख सकदे हां ड्यूरिंग दी समर्स हाईली पीक जदों मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी दी लोड होंदी है ते उस दे विच इह बहुत वड्डी राहत मिलेगी आपां बिजली महकमे नूं कि भी उस दे विच ब्लैकआउट्स दा जिहड़ा रिस्क है ओह बहुत घट जाएगा ते चीप एंड बेस्ट सोर्स हैगा सर। इन्हों देखा जाए तो ये कोई पोल्यूशन नहीं होंदा हैगा, काफी मतलब कि जब अपन देखी जाइए अपन डीपली देखिए ये बहुत वधिया मतलब कि टेक्नोलॉजी है भी ना तो ये कोई प्रदूषण होंदा है ते ना कोई एदा कोई ज्यादा कोई ऑपरेशनल का खर्चा आया, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार जो इन्हें उसे इंस्टॉल कर दिए तो काफी लंबे समय तक असि ये बेनिफिट ले सकते हैं।
1: जी शुभकरमन सिंह जी, साढ़े सुनने वालों को तुसी दसना चाहोगे कि होर कि स्कीम्स ने सरकार दियाँ जिहड़ियाँ सौर ऊर्जा नूं प्रफुल्लित कर दियाँ ने ताकि लोग ज़्यादा तो ज़्यादा इहदा इस्तेमाल कर सकन जी?
0: सर इस टाइम जिहड़ा डिपार्टमेंट वालों सानू जिहड़ी नबार्ड दे काम चल रहे ने सोलर रिलेशन दे ते नबार्ड वालों सानू 3 साल तक का समय मिले है जिहड़े कि आपां बिल्डिंग सिलेक्ट कीते ने जिहड़े भी आपां गवर्नमेंट अदारे सिलेक्ट कीते ने 3 साल दे विच जिहड़े भी असीं टारगेट अचीव करांगे उहनां नूं आपां।
1: जी सरकारी अदारियां च तो चलो 3 साल तक ये सारा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा, सौर ऊर्जा हर पासे होएगी, बिजली का खर्चा घट जाएगा, प्रदूषण नूं भी उहदे च भी ठल पएगी। सरकारी स्कीम्स बारे तुसीं की दसना चाहोगे साढ़े सुनने वालों नूं?
0: मैं दसना चाहवांगा अपने सुनने वाले स्रोतियां नूं कि भी आने वाले समय दे विच असी अपकमिंग मंथ्स दे विच इस स्कीमां नूं असी दोबारा नवे रेटां दे नाल वेखांगे, जिवें कि सोलर रिलेशन ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पीएम कुसुम सोलर पंपिंग, इहदे विच 3 कंपोनेंट होंदे ने सर, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी एंड कंपोनेंट सी। ये आने वाले समय दे विच कुछ ही महीनों दे विच इस स्कीम भी दोबारा लॉन्च हो जाएगी ते मैं दर्शकों नूं कहना चाहुंदा कि भी वो वध तो वध इस स्कीम दे विच हिस्सा लैन।
1: जी शुभकरमन सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी सोनी सवेर प्रोग्राम साढ़े नाल जुड़न लई। साढ़े नाल सन जिला मैनेजर पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी शुभकरमन सिंह, जो कि जलंधर च काम कर रहे हैं, तो जो सानू दस रहे सन कि सरकारी जिहड़ियां बिल्डिंग्स ने उहदे च सौर ऊर्जा दे नाल बिजली दा प्रवाह चलेगा, जिस करके खर्चा भी घटेगा तो प्रदूषण भी घटेगा। सोनी सवेर प्रोग्राम आकाशवाणी जलंधर तो प्रसारित किया जा रहा है।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੀ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
2: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
2: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है,

0: इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
0: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कुनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कुनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कुनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनैनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।

0: पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
1: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वही स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत, वंदे मातरम के 150 वर्ष, भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मिफ 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
2: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्धविराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
3: हम लिख के गया ऐसे करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
4: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्षविहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
5: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
6: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
7: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और

0: कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2 लाख अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज स्ट्रांग मैरिटाइम केपेबिलिटी इज डिसाइडिंग फैक्टर फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस एंड इंटर इज प्रिपेयरिंग फॉर इट। President Draupadi Murmu visits Kuno National Park in Madhya Pradesh, reviews progress of Project Cheetah. India to host 2-day meeting of BRICS National Security Advisors in New Delhi today. National Testing Agency to commence UGC NET June 2026 examination from today. US Vice President J.D. Vance says Iran talks making progress as delegations meet in Switzerland. And in men's hockey, India beat Netherlands 3-2 in the last match of FIH Pro League Rotterdam leg. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. He said a country with maritime capabilities is strong and has more economic and strategic influence.
3: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
2: Prime Minister Modi made these remarks after commissioning 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra at the Shyama Prasad Mukherjee Port in Kolkata yesterday. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare.
3: जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्रा

ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है। शहर यार दे अल्फाज तुसी सुन रहे सी ते वाकई जी जिंदगी सानू हालात दे वक वक थावां वक वक जगहां ते लेके जांदी है। कोई थां इदां दी हुंदी है जिथे खुशियां हुंदियां ने, सुकून हुंदा है, ते कोई थां कोई जगह इस तरह दी हुंदी है कि असी मुश्किलां नाल घिरे अपने आप नूं महसूस करते हैं। पर जिंदगी इसे दा नां है जी, कदे दुख ने कदे सुख ने, कदे खुशी है तो कदे गमी है, कदे समा सौखा है तो कदे औखा है। पर आपां जिंदगी दे हर रंग नूं जदों खिड़े मत्थे स्वीकार करके चलते हैं तो फिर जिंदगी खूबसूरत लगती है। गज़लां आकाशवाणी जलंधर तो नशर कीतियां जा रही ने। अगली गज़ल जगजीत सिंह होरां दी आवाज़ च, कलाम राजेश रेड्डी दा।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
3: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
2: इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।
4: हेलो,
5: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
6: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लई रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
2: आकाशवाणी जलंधर तो तुसी गजलां सुन रहे हो जी। हुण सुनदे हां तलत अजीज दी आवाज़ च सूरज सनम दा कलाम।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: तै सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: डार्लिंग डार्लिंग दा मौसम बड़ा सुहाना,
1: ऐसे ना मुझे तुम देखो, है ना।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल
1: ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी कॉल करने लई, सुनदे हां तुहाडी पसंद।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: प्रभजोत जी, मैं सुनिया वसदे वेड़े प्रोग्राम च कुछ तब्दीली हुई है।
3: बिल्कुल सुखजीत जी, तब्दीली तो हुई है।
2: ओ केड़ी तब्दीली है भाई?
3: देखो जी, जेड़ा प्रोग्राम आंदा सी ना बुधवार नु, ते ओ हुन हो गया शनिवार नु।
2: यानी कि झांजरां दे बोर हुन शनिवार छन क्या करनगे?
3: बिल्कुल जी, ते जेड़े शनिवार नु प्रोग्राम सी ना, मेरी कलम तो सांझ शक्ति रूपा, ए तुसी सुन सकोगे बुधवार नु।
2: यानी कि बुधवार दी झांजरां दे बोर वाली फरमाइश शनिवार नु छन क्या करेगी, ते शनिवार दे सारे सिलसिले असी बुधवार पेश करया करांगे
3: जी।
4: ब्रेक तो बाद असी फिर हाजिर हाँ जी, तो इस प्रोग्राम च हैलो फरमाइश च आखिरी बार हाजिर होवांगे, तो अज दे प्रोग्राम दी आखिरी फोन कॉल सुनांगे। हाँ जी, स्वागत है जी।
5: हाँ जी, सत श्री अकाल सर जी।
4: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
5: पाली प्याला, जिला हुशियारपुर।
4: होर पाली जी, ठीक ठाक हो?
5: हाँ जी सर, बहुत वधिया जी, दसो तुसी ठीक हो?
4: बहुत वधिया। तो प्रोग्राम दे आखिर च वधिया जिहा गीत किहड़ा सुणीए जी?
5: हाँ जी, जीना सिर्फ मेरे लिए ला दिओ।
4: जीना सिर्फ मेरे लिए।
5: हाँ जी सर।
4: बाबुल सुप्रियो ते अलका याग्निक दा गाया।
5: हाँ जी सर।
4: ठीक है जी, आपां सुनदे हां। बहुत बहुत शुक्रिया पाली जी कॉल करन दे लई।
5: ठीक है, थैंक यू सर,
4: मेहरबानी। लो जी, प्रोग्राम दा आखिरी गीत जीना सिर्फ मेरे लिए फिल्म चों बाबुल सुप्रियो ते अलका याग्निक दा गाया। तुसी सारे लो जी इस गीत दा मजा, ते अपने दोस्त वीरेंद्र नूं दे दिओ इजाजत अज दा हैलो फरमाइश प्रोग्राम खत्म करन दी। नमस्कार।

0: सहयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 पोतों दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की इस यात्रा को इन नए पोतों से और गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत की प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। इस परियोजना का उद्देश्य देश में विलुप्त हो रही वन्य जीवों की प्रजाति को फिर से बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति ने उद्यान के चीता प्रबंधन क्षेत्र का दौरा किया। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का इलाज जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार लगभग 32 यात्रियों वाली उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और घायलों के तीव्र स्वस्थ होने की कामना की है। UGC नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT के माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंगोलिया में श्री जयशंकर विदेश मंत्री बी बत्सिसिग के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 24 और 25 जून को वे दक्षिण कोरिया की यात्रा करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ वार्ता करेंगे। डॉ जयशंकर दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में मुख्य भाषण भी देंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका तथा ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश

0: नीति मुद्दों की समीक्षा करने के लिए जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज, FM 100.9 मेगाहर्ट्ज, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज, अति DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। साढ़े स्रोते आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते ने ते नाल दे नाल न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे जरिए भी तुसी आकाशवाणी जलंधर नाल जुड़ सकते हो।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन, ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया लड़ीवार नाटक होया देश।

चने जी और अमरीक सिंह टेलर भी पहुंच गए है। ये पहुंचे ने जी मास्टर जलान जिला संगरूर तो, और नाल साथी मैंबर भी लैके आए ने मनप्रीत सिंह, बलजिंदर सिंह ते परमजीत भुरवा होरां नू। टालीवाला बोदला जिला फाजिलका तो अमीर चंद, नवदीप चतरथ, अर्नव चतरथ, लाजवंती ते अनीता राणी भी हाजिर ने। और दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड तो मुहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन बाबू, मिर्फा नवाज, बेबी चाहत ते सादिया। शाहदरा दिल्ली तो तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा। चंडीगढ़ तो राहुल खुराना, रचिता केशु, रिधान खुराना। कृष्णा पार्क नवी दिल्ली तो सुखविंदर सिंह जौड़ा ते सीटी दीवाना भी पहुंच गए ने जी। और पिंड हीरावाली जिला फाजिलका तो पक्के स्रोते हैं कहिंदे असी, कौन ने? सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु सरमन रिणवा कहिंदे जी धमक जलंधर पैंदी, सानू बहुत वधिया लगता है। शुक्रिया जी, तुहाडे सुनेहे भी सानू बहुत वधिया लगते ने। इस तरह बने रहो। और आकाशवाणी जलंधर च दूसरा जिहड़ा सुनेहा पढ़ रही हाँ, बुलटाणा वडशिंगी महाराष्ट्र तो, महाराष्ट्र तो बहुत प्यार मिलता है, शुक्रिया जी तुहाडा। अमोल मानकर, शोभा ताई, लो जी दीपाली भी पहुंच गई। दीपाली और शलोक कुमार बुलटाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र तो, सहदेव दामोदर, शशिकला और सुमेध कुमार ये भी हाजिर ने। थोड़े सारियां दी रली मिली पसंद है जी, हरभजन मान दी आवाज़ च गीत सुनना चाहते हो, लो फिर नचदे टपदे हाँ।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: 873 किलो हर्ट्स ते असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। इस वेले दिन दे 12 बज रहे ने। कुछ ही पलां च तुसी सुनोगे हिंदी विच समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा

0: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित तीन पोतों, दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का उपचार जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया और घायलों के तेजी से स्वस्थ होने की कामना की। यूजीसी नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में यह समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बिस्किक से साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। कतर के प्रमुख प्राकृतिक गैस निर्यात ढांचे में हुए एक विस्फोट में 54 लोग घायल हो गए और 18 लोग लापता हैं। ये विस्फोट कल रात रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र में हुआ, जो दुनिया के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में शामिल है। खबरों के अनुसार क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़े व्यवधानों के बाद संयंत्र में परिचालन कार्य दोबारा शुरू करने का काम चल रहा था। फीफा विश्व कप में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर 3-1 से जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने इस टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश कर रहे हैं प्रोग्राम वस्ते वेड़े।

0: बड़ी खुशी हुई मैनू।
1: तो तुसी भी इन्हां नूं कदी सरप्राइज गिफ्ट दित्ता कोई?
0: हाँ जी, जदों साडा कोई भी ओकेजन हुंदा, मतलब कि इदां हुंदा, तां मैं भी इन्हां नूं सरप्राइज भी आ चॉइस इन्हां दी हैगी है, फिर
1: जी
0: मैं भी टेलर कोल चली जांदी हां,
1: जी
0: उत्थे पैंट शर्ट जां कोई टी शर्ट वगैरह जां भी मतलब कुछ भी लै के, तां इन्हां
1: जी
0: नूं मैं गिफ्ट दिंदी हां।
1: 33 साल हो गए जी तुहाडी व्याहता जिंदगी नूं।
2: बिल्कुल।
1: सफल व्याहता जिंदगी दा गुरमंत्र की है?
2: मैडम ये है भी जे तुसीं देखो, साढ़े जिहड़े वाइफ ते हसबेंड है, इक गड्डी दी तरह, इक भी पहिया इहनां चों टेढ़ा हो जाए ते
1: जी
2: गड्डी चल नहीं सकदी,
1: सुचारू ढंग नाल नहीं चल
2: सुचारू। बिल्कुल
1: सकती।
2: जी। ते कोशिश ये होंदी है मियाँ बीबी इतफाक रखन, अपने बच्चों की केयर करन, भी ताकि कि वो अपना बच्चे नाम इदा कमाउन कि याद रखना भी उन्हां दी औलाद नहीं है।
1: जी प्रवीण जी, बहुत सारे बच्चे अज अपनी मर्जी नाल शादियां कर लेंदे ने,
0: हाँ जी
1: है ना? माँ बाप नूं जे रजामंद कर लिया तो ठीक है, तो नहीं तो फिर दूर दुराडे होके आप ही अपनी मर्जी नाल विआह करदे ने। अज विआह ते कल नूं गुस्से गिले,
0: हाँ
1: भरोसे
0: जी
1: गिले शुरू हो जांदे ने।
0: हाँ जी।
1: इहो जे बच्चियां नूं की कहना चाहोगे?
0: मैं तो मैडम यही कहना चाहुंदी हां कि देखो बच्चों, जे तुसीं अपने आप मैरिज कराउणे आ, जे कराउणे आ तां उहदे विच जिहड़ियां प्रॉब्लम्स आउंदियां उह तुहानूं खुद फेस करनियां पैणियां। पर एक गल इन्ना ध्यान रखो भी जिस माँ बाप ने जन्म दिता है उन्हां नूं चाहे मर्जी ना करा लो, पर उन्हां दी राय मशवरा जरूर लै लो, तां कि कल नूं दोनों परिवारां नूं कोई प्रॉब्लम आउंदी है तां माँ बाप तुहाडे नाल खड़े रहण, तुसीं माँ बाप दे नाल खड़े रहो। मेरा यही संदेश है कि बच्चियां नूं माँ बाप तो पुछ के ही मैरिज करवानी चाहिए है, माँ बाप नूं भी थोपना नहीं चाहिए। अगर उन्हें बच्चों की अंडरस्टैंडिंग हैगी है, जानते हैं, तो माँ बाप नूं नहीं दखलअंदाजी करनी चाहिए, बच्चों नूं आशीर्वाद देनी चाहिए है,
1: बिल्कुल ठीक है जी।
0: ताँ कि बच्चे कोई गलत स्टैप ना चक्कर,
1: हाँ तालमेल भी उन्हों का बनिया रहे।
0: तालमेल भी बनया रहे ते
1: और
0: बच्चों की ते माँ बाप की जिंदगी सुखाली बीते।
1: वाह जी वाह, चलते चलते साढ़े सुनने वाले नूं, घर बैठे जोड़ियां नूं की कहना चाहोगे गुरुवर साहब?
2: जुड़ियां नूं मेरी यही राय है जी, जो मैडम ने जिदा हम दस्या भी बच्चों नूं भी अपने माँ प्यो की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, ते पेरेंट्स नूं चाहिए भी बच्चों की राय नूं जरूर गौर करन, ते
1: समा बदल
2: ये ना, हाँ
1: चुके
2: जी,
1: हैं।
2: ये ना सोचने भी उन्होंने बच्चों से थोपना है। जब भी कोई शादी करनी है पहले बच्चों को पुछना चाहिए, बच्चे थोड़ी कोई चॉइस तो नहीं तो फिर असं देखिए,
1: जी
2: तो ये बच्चा मतलब कि पेरेंट्स नूं हर जोड़ी जो ख्याल रखना चाहिए कि वो इतफाक रखन, मियाँ बीबी की आपस की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है इस बारे में।
1: जी सो अशोक ग्रोवर जी ते प्रवीण ग्रोवर जी, मेहमान बरूहां दे प्रोग्राम च तुसी साडे अज दे मेहमान बने। बहुत वधिया वधिया प्यारियां प्यारियां गल्लां कीतियां। परमात्मा अग्गे दुआ करदे हां कि इसे तरह एक दूजे दे साहीं जींदे रहो। घर बैठे जुड़े जरूर तुहाडी जिंदगी तों कुछ सिखणगे और अपनी जिंदगी नूं होर वधिया ते खुशहाल बनाउणगे। स्टूडियो च आउण लई बहुत बहुत शुक्रिया जी।
2: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
0: ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ
3: ਜੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਪਰੋਹਾਂ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਤੇ ਹੈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੋਕ ਗਰੋਵਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗਰੋਵਰ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ।
4: ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕੇ।
3: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
4: ਜੀ।
3: ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣ ਲਈਏ
4: ਜੀ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका

0: जिले में कूनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे पहले राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपये का इनाम था। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ सरसावा नाकुर रोड पर हुई। एसटीएफ के अनुसार ललन सिंह और उसके साथी हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियारों की चोरी जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल थे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य और एक किसान तथा अन्य निवासी शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया की विदेश मंत्री बी बत्तिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। वहां वे विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 360 अंक बढ़कर 77,163 पर और निफ्टी 105 अंक बढ़कर 24,118 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, उड़ीसा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akash.

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। आओ तुहानु जानकारी दे दईए अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम ते उन्हां दे प्रसारण समय दी। हुण तो थोड़ी देर बाद 1:10 ते तुसी प्रादेशिक खबरां सुणोगे।

0: ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1930 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.cybercrime.gov.in ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक होया।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। मगरबी बंगाल में बीजेपी सरकार ने अपना पहला मुकम्मल बजट पेश किया है, जिसमें समाजी बहबूद, बुनियादी ढांचे के फरोग और रोजगार पर तवज्जो मरकूज की गई है। ख्वातीन के लिए मखसूस कई स्कीमों का ऐलान भी किया गया है। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की मीटिंग नई दिल्ली में हो रही है, जिसमें उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर खारजा एस जयशंकर मंगोलिया के अपने हम मनसब के साथ इकतसादी राबतों को मजीद मुस्तहकम बनाने के मामले पर बातचीत करने वाले हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज आसाम और मेघालय में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है और फीफा

0: वर्ल्ड कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर वर्ल्ड कप में अव्वलीन कामयाबी हासिल की है। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल में बीजेपी सरकार ने अपना पहला मुकम्मल बजट पेश किया है, जिसमें समाजी बहबूद, बुनियादी ढांचे के फरोग और रोजगार पर तवज्जो मरकूज की गई है। खवातीन के लिए मखसूस कई स्कीमों का ऐलान भी किया गया है। रियासती सरकार के मुलाजमीन के महंगाई भत्ते में 20% का इजाफा किया गया है। रियासत के वजीर खजाना स्वपन दास गुप्ता ने शुभेंदु अधिकारी सरकार के पहले बजट में ये ऐलान किया। इस तरह मजमुई महंगाई भत्ता 38% हो जाएगा। इसका इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। उन्होंने ये भी कहा कि रियासती सरकार समाजी बहबूद की सभी मौजूदा स्कीमें जारी रखेगी। वजीर खजाना ने यह ऐलान भी किया कि रियासती सरकार के स्कूलों और सरकार की इमदाद से चलने वाले स्कूलों में लड़कियों को 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। जनाब स्वपन दास गुप्ता ने असेंबली में यह ऐलान भी किया कि सरकार मुख्तलिफ खाली ओहदों के लिए 1,00,000 अफराद की भर्ती करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि रियासती सरकार खातून उम्मीदवारों के लिए 33% खाली ओहदे रिजर्व करेगी। रियासत के वजीर खजाना ने MLA के मकामी एरिया तरक्याती फंड को 70,00,000 रुपये सालाना से बढ़ाकर 1,00,00,000 रुपये करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रियासती पुलिस फोर्स में 20,000 सीटों पर तकरूरी की जाएगी। शुमाली बंगाल में एम्स अस्पताल और कैंसर अस्पताल कायम किया जाएगा। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की 2 रोज़ा मीटिंग आज से नई दिल्ली में हो रही है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: इस मीटिंग के दौरान ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीर और वफूद के सरबरा आज दुनिया को दरपेश गैर रिवायती सिक्योरिटी चैलेंजों के मौजू पर तबादला ख्याल करेंगे। वो उभरते हुए सिक्योरिटी खतरात के ताल्लुक से नई टेक्नोलॉजियों के रोल के साथ साथ कौमी सिक्योरिटी चैलेंजों की तेज़ी के साथ बदलती हुई नौयत पर भी गौर व खोज करेंगे। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीर और वफूद के सरबरा दहशतगर्दी से निमटने और सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रिक्स के मुश्तरका वर्किंग ग्रुपों की हालिया मीटिंगों के नतीजों का जायज़ा भी लेंगे, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मवासलाती टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मामला भी जेरे गौर आया था। दिल्ली से रिशु जायसवाल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग के बैन अल-अक़वामी दिन की अजीम कामयाबी इस हकीकत की अक्कासी करती है कि योग से न सिर्फ दुनिया भर में करोड़ों लोगों को जिस्मानी तंदुरुस्ती बरकरार रखने में मदद मिल रही है, बल्कि इससे उन्हें एतमाद के साथ मुस्बत ज़िंदगी जीने की तरगीब भी हासिल हो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक संस्कृत सुभाषितम शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि योग जहन को पूरी तरह सुकून और तस्कीन देने का अहम वसीला है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुर में कूनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया कबीले के अरकान से मुलाकात की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके रोल को सराहा और कहा कि मकामी बिरादरियों की सरगर्म शमूलियत चीतों को महफूज रखने के प्रोग्राम की कामयाबी में अहम रोल अदा कर रही है। इससे कबल सदर जमहूरिया कूनो नेशनल पार्क में एक सफारी पर गईं और चीतों की बहाली के प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लिया। मुतालिका एहलकारों ने सदर जमहूरिया को बताया कि सरदस भारत में 52 चीते हैं और उनमें से 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं। 3 चीतों को जंगली जानवरों की गांधी सागर पनाहगाह में मुंतकिल किया गया है। प्रोजेक्ट चीते का आगाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2022 में किया था। उस वक्त नामीबिया से 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में लाकर छोड़ा गया था। इसके बाद जनूबी अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते वहां लाए गए। ये खबरें आकाशवाणी से नाशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर 2 मुल्कों के सरकारी दौरे के पहले मरहले में मंगोलिया पहुंच गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वो भारत और मंगोलिया के दरमियान खसूसी साझेदारी को आगे बढ़ाने की खातिर मुफीद तबादला ख्याल और बातचीत के मुंतजर हैं। अपने इस दौरे में वजीर खारजा मंगोलिया के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और अपने हम मनसब के साथ बातचीत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर अपने दौरे के दूसरे मरहले में बुध को 2 दिन के दौरे पर जनूबी कोरिया जाएंगे। वो अपने हम मनसब चो ह्यून के साथ तबादला ख्याल करेंगे और जुमेरात को जेजू के मकाम पर अमन खुशहाली से मुतालिक जेजू फोरम में क्लीदी खिताब करेंगे। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने मशहूर मारूफ जरई साइंसदान और पद्म भूषण अवार्ड याफ्ता सरदारा सिंह जोहल से आज लुधियाना

0: मुलाकात की और पंजाब के ज़रई बहरान पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग के बाद जनाब नबीन ने कहा कि एक ऐसी शख्सियत से बातचीत उनके लिए बायस इफ्तिखार है जिसने ज़राअत के शोबे में गैर मामूली ताउन किया। उन्होंने कहा कि जनाब सरदार सिंह के साथ बातचीत के दौरान उन्हें ज़रई मामलात पर अहम मालूमात हासिल हुईं और उन्हें एतमाद है कि उनके नज़रियात और मशवरे मुल्क के लिए सूदमंद साबित होंगे।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: इत्तेहाद और नशरियात और पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर ममलुकत डॉक्टर एल मुरुगन आज मध्य प्रदेश के दो रोजा दौरे के तहत भोपाल पहुंचेंगे। डॉक्टर मुरुगन आज शाम भोपाल हवाई अड्डे पहुंचेंगे और वहां से वो रियासती गेस्ट हाउस की जानिब रवाना होंगे, जहां वो भोपाल जिला कलेक्टर के साथ एक मीटिंग करेंगे। कल वो देवास जिले के कनोड तहसील के दोकाकुई गांव जाएंगे, जहां वो एम्पिलैड स्कीम के तहत मंजूरशुदा मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह करेंगे। उमूर खारजा से मुतालिक पार्लियामानी कायम कमेटी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख का चार दिन का मुतालियाती दौरा शुरू कर दिया है। इसका मकसद किलीदी सरहदी सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी मामलात का जायजा लेना है। मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर इस कमेटी के चेयरपर्सन हैं। हमारे नामानिगार ने बताया है कि ये कमेटी सरहदी बंदोबस्त और सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी सूरत हाल का बरसर मौका जायजा लेने के लिए इस महीने की 25 तारीख तक जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह का दौरा करेगी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज आसाम और मेघालय में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। IMD ने जेली हिमालयी मगरबी बंगाल, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा, ओडिशा और शिमाल मशरक हिस्सों में कहीं कहीं कल तक शदीद बारिश की भी पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार जजायर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज़ हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। IMD के मुताबिक छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक गर्मी का जोर जारी रहेगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज सुबह वैंकूवर में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 1-3 से हराकर वर्ल्ड कप में अपनी अव्वलीन कामयाबी हासिल की है। लिवरपूल के सरकर्दा खिलाड़ी मोहम्मद साहले ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ ही मिस्र की टीम ग्रुप जी में सरफहरिस्त आ गई है। इससे कबल आज फ्लोरिडा में ग्रुप एच के एक मैच में केप वर्ड और यूरुगे का मुकाबला 2-2 से बराबरी पर ख़त्म हुआ। आज के मैचों में ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10:30 शुरू होगा। और अब आखिर में ख़ास ख़ास खबरें एक बार फिर। मगरबी बंगाल में BJP सरकार ने अपना पहला मुकम्मल बजट पेश किया है, जिसमें समाजी बहबूद, बुनियादी ढांचे के फरोग और रोजगार पर तवज्जो मरकूज की गई है। खवातीन के लिए मखसूस कई स्कीमों का ऐलान भी किया गया है। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की मीटिंग नई दिल्ली में हो रही है, जिसमें उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर खारजा एस जयशंकर मंगोलिया के अपने हममनसब के साथ इक्तसादी राबतों को मजीद मुस्तहकम बनाने के मामले पर बातचीत करने वाले हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज आसाम और मेघालय में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और फीफा वर्ल्ड कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर वर्ल्ड कप में अव्वलीन कामयाबी हासिल की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। फौजी वीरो खबरां तो बाद फिर हाजिर हो गए हैं तुहाडे मनोरंजन लई कुछ होर फिल्मी नगमे लैके। तुहाडे नज़र करांगी जरा हटके जरा बचके फिल्म दा गीत, आवाज़ां वरुण जैन, सचिन जिगर ते शहदाब दियां। गीतकार ने अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार सचिन जिगर।

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया

0: कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में 2 प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय शासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन ₹5,000 बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में ₹5,000 की वृद्धि की गई है। संदीपन दासगुप्ता के साथ काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
0: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, बीजेडी और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज CISF के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि CISF के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की चार दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्मभूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन आज शाम दो दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉ मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टार्मर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांति

काल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकदे हो ते नाल दे नाल न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे जरिए भी तुसी आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकदे हो। रंगली धरती प्रोग्राम च अज दे गायक कलाकार ने सुरजीत सिंह।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
1: इंग्लैंड की धरती ते भारत दीआं धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते।
2: अंतराल तो बाद एक बार फिर तो स्वागत सारे ही स्रोतियां दा प्रोग्राम रंगली धरती। रंगली धरती अज तुसी सुरजीत सिंह दे गाए लोक गीत सुन रहे हो। आओ हुण सुनदे हां इन्हां दी आवाज़ च लंघ आ जा पतन चना दा यार।

आता है, ना रात को सोया जाता है। उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना। तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

न जाने कितने लोग जिंदगी में आते हैं और चले जाते हैं, मगर कुछ लोग दुआ बनकर दिल में बस जाते हैं। वक्त बदल जाए, मौसम बदल जाए, पर दिल की आवाज़ हमेशा यही कहती है, तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा।

मोहब्बत की राहों में शब्द कम पड़ जाते हैं, नजरें ही दिल का पैगाम सुनाती हैं। जब दो दिल एक दूसरे को अपना मान ले, तब प्यार होता है और इकरार हो जाता है। लो सुनो श्री 420 फिल्म का गीत। आवाज़ आदित्या ने, मन्ना डे और लता मंगेशकर ने इस गीत नु लिखिया, शैलेंद्र ने और संगीत निर्देशक शंकर जयकिशन।

चांद खिड़की पर ठहरा रहा, सितारे भी सारी रात जागते रहे, हम करवटें बदलते रहे और किसी की यादें दिल को बहलाती रहीं। सदाबहार गीत दा आखिरी नगमा। थोड़ी नज़र कर रही हूँ आपकी कसम फिल्म चुलिया गया, आवाज़ा दितिया ने लता मंगेशकर ते किशोर कुमार ने, गीतकार आनंद बख्शी ते संगीतकार राहुल देव बर्मन।

की टेक तू, संता की ओट तू, सच्चा सिरजनहारा। इस गुरबाणी फरमान मुताबक ओ प्रभु ही सबदा ओट ते आसरा है। प्रभु प्यारे भगत उसे ते ही ओट रखदे हन ते उसे दी ही टेक मनदे हन। दीन दुनिया तेरी टेक, सब मैं रव्या साहिब एक। उसे नु ही सर्व कला समर्थ दयालु, दीना ते दया करन वाला मनदे हुए उस अगे ही अरदास बेनती करदे हन। राग वढ़ंस विच बाणी के बोहित साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाउंदे ने, कर किरपा प्रभ दीन दयाला, तेरी योट पूरन गोपाला। सरवण करदे हां भाई तरलोचन सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

कर कृपा प्रभ दीन दयाला, तेरी योट पूरन गोपाला। इस शब्द अगायन की ताजी पाई तरलोचन सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने। कुल सृष्टि का मालक अपने प्यारे जीवां दी हर स्थान ते हर पल रख्या करदा है। उसकी कृपा हो जावे ता इंसान अज्ञानता दे अंधकार वाले डूंगे तो डूंगे खूह विच्चों बाहर निकल के ज्ञान रूपी चानण प्राप्त कर लैंदा है। ओ दीना ते दया करन वाला प्रभु उस जीव दे दुखां नूं भी हर लैंदा है। ताही ता उसनू दुख पंजन भी किया जांदा है। राग मल्हार विच गुरबाणी फरमान है, हे गोबिंद, हे गोपाल, हे दयाल लाल, प्राण नाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। सरवण करदे हां बीबी चरणजीत कौर होरां वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

0: हे गोबिंद, हे गोपाल, हे दयाल लाल, प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। इस शब्द अगायन कीता सी बीबी चरणजीत कौर होरा। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी गुरलाल सिंह।
1: यह पावन पवित्र शब्द शहीदां दे सिरताज बाणी के बोहित पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज दा मलार राग अंदर उचारण किया होया गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग

दीन दयाल परोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़े। इस शब्द का गायन किया सी पाई कमलजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इमारत में स्थित एनिमेशन सेंटर में मौजूद 16 से 18 वर्ष की आयु के 14 छात्रों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में छात्रों की तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सतेग पटनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय करडिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की

0: रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत में कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से

0: हूँ कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
1: ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गदीर निजामी पुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया के राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत इथियोपिया रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए मुकाबले में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। लो हुण सुनो साडे अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा। शाम 6:30 बजे सुनोगे देहाती प्रोग्राम। अज दे इस प्रोग्राम विच होया देस पराया नाटक दी 12वीं कड़ी सुनोगे। काम दियां गल्लां होणगियां। इस तों इलावा माड़े पाणी दी सही वरतों किवें कीती जाए इहदे बारे डॉक्टर हरिओम मिशाज होरां नाल कीती गल्लबात सुनाई जाएगी। कल दे प्रोग्राम ते मौसम दा हाल भी दस्या जाएगा।

रात 8 बजे सुनोगे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। रात 9:15 बजे साढ़े दिल्ली के अंदर तो सुनोगे प्रोग्राम स्पॉटलाइट। रात 9:30 बजे सुनोगे पंजाबी नाटक सरहद। रात 10 बजे सुनोगे उर्दू मुशायरा। भाग लेने वाले शायर होंगे शोरा हजरात मोहम्मद ओवैक, रेणु नैयर, मोहम्मद अनवार आजर, डॉक्टर मोहम्मद जमील उर रहमान। रात 10:30 बजे चंद गजलां समात फरमाओगे। हिंदी पंजाबी अंग्रेजी खबरां आपो अपने समय मुताबक नशर कीतियां जाणगियां। ਇਸੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ। ਆਹ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਗਾਨ।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। इंग्लैंड की धरती ते भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मुराक, नवी कार जितन दो मौका।
3: वाव, मैं पापा नो सरप्राइज देंगी, बस थोड़ी जी डिटेल पढ़नी है।
4: रुक जा मुराक,
5: कि अजे पॉपअप्स तो सावधान रहो, स्कैमर्स निजी वेरवी आंदी दुर्वर्तो कर सकते हन।
4: ओ तू समझ गई ना, ठंड रख।
2: कर कार जीत जान देता, पापा होमवर्क नहीं करांदे।
5: RBI कहंदा है स्मार्ट बनो,
2: कूल रहो,

0: आजू आजू आजू बल साहब आजू बच्चे वाले आजू।
1: रुड़िया राम जी, जय हिंद जी।
0: जय हिंद जी, जय हिंद जी। बल साहब बच्चे वालों की हाल चाल है तेरा?
1: हाले चाले वाह वाह वधिया, चढ़दी कला। तुसी सुनाओ।
0: हाल चाल तकड़ा। देखो अमूमन जदों आपां दुनिया दे विच विचरदे हाँ,
1: हाँ जी
0: अलग अलग सुभाअ, अलग अलग बिरती, अलग अलग प्रवृत्ति दे लोगों नाल अपना वाह वास्ता पैंदा है।
1: ठीक है जी।
0: तुसी देखो कि हर बंदा जिहड़ा है
1: हाँ जी
0: दूजे की पड़चोल और दूजे की परख बारे बयानबाजी करूँगा।
1: ठीक है जी।
0: स्वय दे बाबत या स्वय पड़चोल दे बाबत बहुत घट बंदे है जिहड़े तुहानूं दुनिया दे विच मिलणगे,
1: सही गल है जी,
0: है ना।
1: बिल्कुल।
0: अपने बारे कोई ताड़ा राय नहीं, कोई ताड़ा क्यास नहीं है।
1: अंदर वल झकना बहुत औखा जी।
0: औखा है
1: जी
0: क्योंकि अखां बाहर देखदे ने ना,
1: बिल्कुल जी,
0: ते जे अखां नूं आपां अंदर देखणा ते अखां बंद करनियां पैंदियां ने।
1: बिल्कुल जी,
0: सो इस करके जिदा कहते हैं जी बड़ा भेत है,
1: हाँ जी,
0: असल दे विच तां सारा कुछ अंदर है।
1: अंदर ही है, बिल्कुल जी,
0: देखो जो जो भी साढ़े अंदरों ही सारिया चीज़ां पैदा होंदियां ने ना,
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: है ना।
1: बिल्कुल,
0: जिन्नियां भावनावां है, प्यार है, मुहब्बत है, हासा है, रोना है, सारिया चीज़ां अंदरों पैदा होंदियां।
1: जो आप लब बार रहे होंगे
0: पर सारिया चीज़ां मनुख की है, साड़ी बिरती प्रवृत्ति की है, असीं बाहरों लभदे हां।
1: सही गल है जी,
0: देखो संकेत तां मालक ने तुहाडे अगे स्पष्ट रख्या होया है,
1: हाँ जी,
0: तुसीं समझदे नहीं,
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: हाँ जी,
0: जिहड़ियां चंगियाइयां उह भी अंदरों है,
1: हाँ जी,
0: बुराइयां उह भी अंदरों है, विकार उह भी अंदरों है।
1: होर तो होर रुड़िया राम जी, गुरबाणी भी कहती है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे,
0: पिंडे
1: जो खोजे सो पावे,
0: पावे
1: खोजना पैना है आपां
0: खोजना पैना है। सो इस करके खोज जिहड़ी कितें बाहर नहीं है,
1: हाँ जी,
0: ये तो ब्रह्मांड तो तुहाडे अंदर खड़ा है,
1: अंदर खड़ा, बिल्कुल जी,
0: सारा कुछ तो तुहाडे अंदर है।
1: सही गल है जी,
0: सो इस करके तुहाडी कितें ना कितें जिद्दां आपां कहिंदे सफलता और असफलता,
1: हाँ जी,
0: इहदा बल साहिब भेत ही है
1: हाँ जी,
0: कि जिहड़े सफल बंदे है वह अपने अंदरों लभदे असफलता,
1: बिल्कुल जी,
0: ते जिहड़े असफल बंदे है वह सफलता बाहरों लभदे।
1: बाहरों लभदे, सही गल,
0: फार्मूला यही है,
1: बिल्कुल जी,
0: होर कोई मेहनत का, मशक्कत का, लियाकत का, ताकत का कोई फर्क नहीं है।
1: हाँ जी,
0: फर्क सिर्फ जिहड़ी ताकत ऊर्जा लाउण दा है, किस पासे ला रहे
1: सही गल है जी,
0: है कि नहीं।
1: बिल्कुल जी,
0: जदों आपां गलत दिशा दे विच अपनी ऊर्जा नूं जाया करदे रहांगे
1: हाँ जी,
0: ते फिर उहदा सानूं लभणा तां कुछ नहीं है।
1: हुण जिहड़ा कोहलू वाला बल्द हुंदा आ, भजदा तां उह वी रहिंदा सारी उम्र,
0: देख लो
1: पर उत्थे दा उत्थे,
0: उत्थे तो उत्थे खड़े ने।
1: बिल्कुल जी,
0: ये है
1: हाँ जी,
0: ज्यादातर साडा हिसाब किताब यही
1: हाँ
0: है
1: जी,
0: कि तुसीं देखो भी तुहाडी जिंदगी कोहलू वाले बल्द दी तरह,
1: बिल्कुल जी,
0: उदां ही तुसीं उठदे हो,
1: हाँ जी।
0: उदां

0: हाँ जी बाल साहब, देखो लड़ीवार होया देश पराया, ये आप सजना साझा करते हैं।
1: ठीक
0: है, अज्ज यदि 12वीं किश्त है जी सजना आप साझी करनी है।
1: सुना दियो जी।

लड़ीवार रेडियो नाटक होया देस पराया दी 11वीं कड़ी च तुसी सुन चुके हो कि कैनेडा च परमीत कौर ते उसके पति आर्यन ने ईशप्रीत नूं घरों कढ़ दिता है ते ओ चौधरी ते लखेबाई नाल एक फार्म दे कैबिन च रहण लग पैंदा है। हुण सुनो इस लड़ीवार रेडियो नाटक की 12वीं कड़ी।

0: ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ T20 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ICC T20 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ FM ਰੇਨਬੋ ਚੈਨਲ ਤੋਂ 102.7 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ।
1: ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 103.6 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਵਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇਲੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਵਿਧਾ ਤਹਿਤ ਸੁਣੋ ਹਿੰਦੀ ਵਾਰਤਾ। ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਏਕ ਜੀਵਨ ਪਰਿਚੈ, ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪਿਕਾ ਮਨੋਟ।
2: संसार में ऐसे कम लोग हैं जिन्होंने जीवन के केवल 52 साल के अंतिम 14 साल राजनीति में बिताए हों और इसी अल्पावधि में वे महानतम ऊंचाई को छूकर इतिहास में अमर हो गए हों। ऐसे ही थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में हुआ था और उन्होंने अपनी अंतिम सांस 23 जून 1953 को श्रीनगर में ली, जहाँ उन्हें नज़रबंद रखा गया था। भारत देश का महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक सच्चे देशभक्त, शिक्षाविद, संसदविद, राजनेता, मानवतावादी और इन सबसे बढ़कर राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के प्रबल समर्थक थे। कलकत्ता में 6 जुलाई 1901 को जन्मे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को विद्वता, राष्ट्रीयता की भावना और निर्भयता अपने पिता सर आशुतोष मुखर्जी से विरासत में प्राप्त हुई, जिनका कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति और कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के नाते बंगाल में एक विशिष्ट स्थान था। युवा श्यामा प्रसाद का लालन पालन एक ऐसे वातावरण में हुआ था जहां उन्हें धार्मिक कृत्यों को देखने और अपने पिता और भारत के सभी भागों और विदेश से आए हुए मेहमानों, विद्वानों के बीच अत्याधुनिक और वैज्ञानिक विषयों पर हुई चर्चा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता था। वास्तव में इससे उनमें भारत की पुरातन संस्कृति के प्रति एक गहरी आस्था तथा पाश्चात्य विचारों और ज्ञान के प्रति एक गहरी रुचि पैदा हुई। श्यामा प्रसाद जी के व्यक्तित्व में आध्यात्मिकता, सहनशीलता और मानवीय गुण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं गहरी समझ का सुंदर समन्वय था, जो शिक्षाविद और संसदविद के रूप में उनके पूरे जीवन काल में परिलक्षित होता रहा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने स्कूली शिक्षा मित्तर इंस्टीट्यूट भवानीपुर से ग्रहण की। आगे के अध्ययन के लिए उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में दाखिला लिया। वर्ष 1919 में उन्हें इंटर आर्ट्स की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और 1921 में अंग्रेजी में बीए ऑनर्स की परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। परंतु राष्ट्रीयता की उदात्त भावना ने श्यामा प्रसाद जी को एमए में अंग्रेजी विषय लेने से रोक दिया और बांग्ला तथा एक अन्य भारतीय भाषा लेने पर विवश कर दिया। उन्होंने वर्ष 1923 में एमए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। प्रेसिडेंसी कॉलेज पत्रिका का संपादकत्व उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में खींच लाया। उन्होंने 1922 में एक बंगाली पत्रिका बंगवाणी प्रारंभ की और 1923-24 में पैट लोवल द्वारा संपादित पत्रिका कैपिटल के लिए छद्म नाम से नियमित रूप से लेख भी लिखे। उन्होंने बीएल, डीलिट और एलएलडी की उपाधियां भी प्राप्त की। उन्हें 1927 में लिंकन्स इन से इंग्लिश

में बुला लिया गया। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विश्वविद्यालयों के सम्मेलन में कलकत्ता विश्वविद्यालय का बखूबी प्रतिनिधित्व किया और तब से ही उनकी गिनती भारत के शीर्षस्थ शिक्षाविदों में की जाने लगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी को उनकी गहन अंतर्दृष्टि और शिक्षा योजनाओं तथा नीतियों की व्यापक समझ के लिए जाना जाता था। वर्ष 1924 में वे विश्वविद्यालय सीनेट और सिंडिकेट के लिए चुने गए और उन्होंने बंगाल विधान परिषद में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 1930 में जब कांग्रेस ने विधान मंडलों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया तो उन्होंने विधान परिषद से त्याग पत्र दे दिया, परंतु शीघ्र ही विश्वविद्यालय के हितों की रक्षा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पुनः विधान परिषद के सदस्य बन गए। तथापि उनका मुख्य कार्य शिक्षा क्षेत्र की सेवा करना ही रहा। वर्ष 1934 में श्यामा प्रसाद जी को कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम आयु के कुलपति बनने का सौभाग्य मिला और उन्हें शिक्षा के संबंध में अपने उद्देश्यों और आदर्शों को साकार करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। कुलपति के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने दीक्षांत समारोह में बांग्ला में भाषण दिया, जो वास्तव में न केवल बांग्ला भाषी लोगों के लिए अपितु भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार के प्रति समर्पित लोगों के लिए भी गौरव का क्षण था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू किए जाने के बाद हुए प्रांतीय विधानमंडलों के चुनावों ने भारतीय राजनीति के परिदृश्य को प्रभावित किया। श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय निर्वाचन क्षेत्र से पुनः बंगाल विधानमंडल के सदस्य बने और इससे उन्हें प्रांतीय स्वायत्तता के कार्यकरण का निकट से अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी अवधि के दौरान वे हिंदू महासभा में शामिल हुए। 1940 में वे हिंदू महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष बने और घोषणा की कि हिंदू महासभा का राजनीतिक लक्ष्य भारत को पूर्ण स्वाधीनता दिलाना है। नवंबर 1942 में श्यामा प्रसाद जी ने पुलिस और सामान्य प्रशासन के शासकीय कार्य के निर्वहन में गवर्नर और नौकरशाही द्वारा किए जा रहे हस्तक्षेप के विरोध में बंगाल मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और बहुप्रचारित प्रांतीय स्वायत्तता को हास्यास्पद बताया। वर्ष 1943 में बंगाल में पड़े अकाल के दौरान श्यामा प्रसाद का मानवतावादी पक्ष सामने आया। वह बंगाल राहत समिति एवं हिंदू महासभा राहत समिति दोनों संगठनों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। लोगों से धन देने की उनकी अपील का देश भर में इतना प्रभाव हुआ कि बड़ी बड़ी राशियां इस प्रयोजन के लिए आनी शुरू हो गई। वह केवल मौखिक सहानुभूति ही प्रकट नहीं करते थे बल्कि व्यावहारिक सुझाव भी देते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी उन्होंने संसद में कहा था, अब हमें 40 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं। मैं नहीं जानता कि भविष्य में लोकसभा के सदस्यों के भत्ते क्या होंगे। हमें स्वेच्छा से इस दैनिक भत्ते से 10 रुपए प्रतिदिन की कटौती करें और इस कटौती से प्राप्त धन को हमें अकालग्रस्त क्षेत्रों की महिलाओं और बच्चों के रहने के लिए मकान बनाने और खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए रख देना चाहिए। अगस्त 1947 में गांधी जी ने श्यामा प्रसाद को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बनी प्रथम राष्ट्रीय सरकार में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में उन्होंने देश में 3 अति सफल विशाल औद्योगिक उपक्रमों अर्थात चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री, सिंदरी उर्वरक निगम और हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री की स्थापना करके देश में औद्योगिक विकास की मजबूत आधारशिला रख दी थी। तथापि विभिन्न मुद्दों पर मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों के साथ बढ़ते मतभेद के कारण उन्होंने सरकार छोड़ दी। मंत्रिमंडल से हटने के पश्चात श्यामा प्रसाद जी ने अपनी शक्ति एक ऐसा राजनीतिक मंच तैयार करने के लिए लगाई जहां से वे अपने विचारों और नीतियों से लोगों को अवगत करा सकें। उनके प्रयासों के फलस्वरूप अक्टूबर 1951 में अखिल भारतीय जनसंघ की विधिवत स्थापना हुई। उन्हें इस नए संगठन का प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद

0: बाद 1952 में हुए प्रथम आम चुनाव में प्रथम लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए, हालांकि उनके द्वारा स्थापित दल जनसंघ के केवल दो ही अन्य सदस्य निर्वाचित हो पाए थे। लेकिन वे निराश होने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने उड़ीसा की गणतंत्र परिषद, पंजाब के अकाली दल, हिंदू महासभा तथा अनेक निर्दलीय सांसदों सहित कई छोटी छोटी पार्टियों को एक साथ लाकर संसद में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल का गठन किया, जिसके वे नेता चुने गए। वे सभी उन्हें विपक्ष का मुख्य प्रवक्ता मानते थे और उन्होंने अपनी ओर से सभी प्रमुख मुद्दों का उत्तर देने का अधिकार उन्हें दिया। राजनेता के रूप में उनकी महत्ता एवं कुशाग्रता तथा देश की समस्याओं के प्रति उनके रचनात्मक दृष्टिकोण ने उन्हें सरकार का दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बना दिया था। सत्तारूढ़ दल भी संसद के समक्ष आने वाले विषयों एवं समस्याओं के प्रति उनकी गहन सूझबूझ एवं विवेचना के कारण उनका सम्मान करता था। सरकार की नीतियों तथा कार्यों का उनका सूक्ष्म और मर्मज्ञतापूर्ण परीक्षण तथा उसके तर्कों का उनके द्वारा सहजता और दृढ़ता से खंडन अत्यंत विश्वसनीय प्रतीत होता था। संसद में विपक्ष के नेता के रूप में उनकी भूमिका से उन्हें संसद केसरी की उपाधि प्राप्त हुई। अपने प्रभावशाली विचारों तथा अप्रतिम वाक्पटुता के कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक उत्कृष्ट सांसद बन गए। भारत और पाकिस्तान के बीच लोगों का आवागमन, भारत की विदेश नीति, निवारक नज़रबंदी, चुनाव सुधार आदि जैसे राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न विषयों पर संसदीय वाद विवाद में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस महान राजनेता के संसदीय जीवन का अंतिम कार्य वर्ष 1953 में संपन्न हुआ। उन्होंने जम्मू एवं कश्मीर प्रजा परिषद के मुद्दे को उठाने का निर्णय किया। जम्मू एवं कश्मीर राज्य को भारतीय संघ में शामिल करने के प्रति उनका उत्साह इतना प्रबल था कि अस्वस्थ होने के बावजूद वे तुरंत जम्मू चल दिए, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वह जेल में गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और भारतीय एकता के लक्ष्य के लिए 23 जून 1953 को उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संयुक्त भारत के हितों के लिए लड़ने वाले अग्रणी योद्धा थे, जिसने आजीवन उत्साहपूर्वक इनकी हिमायत की। संसद, राज्य विधानमंडलों, प्रेस एवं दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी नेताओं ने उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट किया और इसे महान क्षति बताते हुए जीवन पर्यंत अपनी मातृभूमि की सेवा में समर्पित रही इस महान आत्मा को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्कालीन प्रधानमंत्री और सदन के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इस सभा की महानतम विभूतियों में से एक और विपक्ष का एक ऐसा नेता बताया जिसने इस सभा की कार्यवाही में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: हुणे तुसी हिंदी वार्ता सुन रहे सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक जीवन परिचय। वार्ताकार सन डॉक्टर रूपिका मनोट। आकाशवाणी दा ए जुलंधर केंद्र ए।
2: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन, ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

या दोस्तों प्रोग्राम जिंदगी हसीने का आगाज करते हैं और जिंदगी का नाम है जिंदगी है एक उम्मीद जिदे सहारे सारी दुनिया कायम है और असी भी कायम है। एक उम्मीद नु देख के सानू अगे वधना पैंदा है क्योंकि जिथे उम्मीद जीउंदी है उत्थे राह अपने आप निकल आंदे ने। हर रोशनी सामने आ जाती है, रस्ते खुलते जाते हैं, तो उस रोशनी पाने वास्ते सानू अपने आप के अंदर अपनी रोशनी पहचानना पैना है कि दुनिया आप चमकन लग पैंदी है। किसी गलती तो किसी रुकावट तो हार के बैठना नहीं चाहिए, बल्कि उस रुकावट तो उस हार तो सानू सिख लैके अगे वधना चाहिए है और अगे वधदे हुए हमेशा चंगे विचारां दे नाल सकारात्मक सोच दे नाल सानू अगे वधदे रहना चाहिए है, क्योंकि जिहड़े सकारात्मक सोच है वह साडी जिंदगी दी नीह हुंदे और नीह नू बड़ा मजबूत बना के रखते हैं। अज अगर समा औखा है तो समा बदलता है, समा बदलेगा, इसलिए माड़े दिनों तो ना डरो, दिन वधिया आणगे। हर वेले हर औखे वेले मुस्कुराते रहो क्योंकि मुस्कुराहट जिहड़ी है वह हर समस्या का पहला हल हुंदी है। और जिंदगी का दूजा नाम ही संघर्ष है। जे अज संघर्ष है तो कल कामयाबी जरूर आएगी और आदा आनंद सानू जरूर मिलेगा। और दोस्तों प्रोग्राम जिंदगी हसीना का आगाज करते हैं इस गीत तो जिसनू गाया अमित कुमार ते अनुराधा पौडवाल ने। फिल्म का नाम है तेजाब।

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजय, कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।

आकाशवाणी जलंधर से सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी का दूसरा नाम ही है मेहनत, उम्मीद, एक रोशनी जिहड़ी कि हमेशा सानू अगे वल लैके चलती है। क्योंकि जिंदगी जिहड़ी है वह एक किताब की तरह है, हर रोज़ सानू एक नवा पन्ना पढ़न नू मिलता है, उस पन्ने तो कुछ सीखन नू मिलता है। हाँ, जेकर कोई रुकावट आ जावे, किसी मुश्किल नाल असीं रुक जाइए तो वह कोई माड़ी गल नहीं है, क्योंकि डिगना माड़ी गल नहीं, पर डिग के ना उठना वह गलत गल हुंदी है। हर एक रुकावट तो, हर एक औकड़ तो सानू कुछ ना कुछ सीख के अगे वधदे रहना चाहिए है, और हमेशा एक उम्मीद जगा के रखनी चाहिए है सकारात्मक सोच दे नाल, और अपने आप ते पूर्ण विश्वास लैके चलना चाहिए है, क्योंकि विश्वास अपने आप ते होवे ता किस्मत भी साथ देण तो पिछे नहीं हटती। जी हाँ दोस्तों, कामयाबी उन्हां नूं मिलदी है जो हमेशा मेहनत और कोशिश करते रहते हैं। जे आपां अपना कल बेहतर बनाना है तो सानू अज पूरी मेहनत और पूरी तवज्जो नाल उन्हूं जीना पएगा। आओ दोस्तों, प्रोग्राम नूं अगे वधाउने हैं, और अगला गीत तुहाडे लई त्रिदेव फिल्म तो, इस गीत नूं गाया है सपना अवस्थी ते अमित कुमार ने।

0: इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते।
1: आकाशवाणी जलंधर सुन रहे हो प्रोग्राम जिंदगी हसीन है ते प्रोग्राम विच अगला गीत दयावान फिल्म तो इस गीत नु गाया मनहर उदास ते अनुराधा पोडवाल ने।

निदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: आकाशवाणी जलंधर ते सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है ते प्रोग्राम विच अगला गीत है जी तुम्हारी कसम फिल्म। तो इस गीत नु गाया है मुकेश ते आशा भोसले ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्र ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के केजीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि राज्य के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
2: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए। अपर मुख्य सचिव गृह डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना की कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
3: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सके।
1: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ वेम्बू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे। चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे, देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए। मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
0: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन

0: भी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
2: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनुपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़ भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
3: वित्त मंत्री डॉक्टर शपन दासगुप्ता ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास

0: लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल एम पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 टाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाईं। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken, मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रसलाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

रात 10 बज रहे ने, पेश ने मुख खबरां। उत्तर प्रदेश के लखनऊ च एक कोचिंग सेंटर विच भयानक अग लगन कारण 15 लोगों की मौत हो गई है, जिन्हां विचों ज्यादातर विद्यार्थी सन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ते प्रधानमंत्री ने दुखांत ते दुख प्रगट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 सालों दौरान कीतियां गईयां तब्दीलियां ने शासन ते प्रशासन विच जनता दे विश्वास नूं मजबूत किया है। शिवसेना नेता अते महाराष्ट्र दे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि शिवसेना यूटीबी धड़े दे 6 लोकसभा संसद मैंबर शिवसेना विच शामिल हो गए ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अज

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स, आकाशवाणी अमृतसर ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। लाहौन समात फरमाओ उर्दू मुशायरा। भाग लैण वाले शायर होणगे डॉक्टर जमीलुर रहमान, मुहम्मद ओवैसी, मुहम्मद अनवर आजर ते रेणु नैयर।
1: आदाब सामईन, ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में आज हम इकट्ठे हुए हैं एक बहुत ही खूबसूरत मुशायरे के लिए। ऑल इंडिया रेडियो के सभी दोस्तों का खैर मकदम करते हुए, सभी दोस्तों का स्वागत करते हुए आज मैं जिन शोरा हजरात से आपको रूबरू करवाना चाहती हूँ, उनमें से सबसे पहले हमारे पास हैं ओवैस ओवैसी, मलेरकोटला से आए हैं। और उसके बाद हैं हमारे साथ एक उस्ताद शायर हैं मलेरकोटला से ही, अनवार आज़र साहब, जिनका तखल्लुस है बुत तराश। उनसे कुछ उनके तराशे हुए शेर सुनेंगे। और मैं खुद हूँ रेनू नैयर, मैं जालंधर से ही हूँ। और हमारे आज के जो मेहमान खसूसी हैं वो डॉक्टर जमील अज़ीज़, जो MLA हैं मलेरकोटला से ही। दोस्तों, मैं मलेरकोटला का नाम बार बार इसलिए भी ले रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मलेरकोटला को शायरी का बहुत खूबसूरत वरदान मिला हुआ है। तो आज ऐसी हमारी किस्मत है, इस स्टूडियो की किस्मत है कि हमारे साथ सारे ही दोस्त मलेरकोटला से इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले जो मैं दावत देने जा रही हूँ, अपना कलाम सुनाएंगे ओवैस ओवैसी साहब।
2: उस्ताद मोहतरम की इजाज़त से एक गज़ल के चंद अशार। ये नहीं कि तुझको खबर ना हो को मेरी दुआ कोई और है।
3: वाह वाह।
2: ये नहीं कि तुझको खबर ना हो कि मेरी दुआ कोई और है, तेरे देने पे मैं समझ गया तेरी रजा कोई और है।
4: वाह वाह वाह, क्या बात है।
2: तेरे देने पे मैं समझ गया, तुझको खबर ना हो कि मेरी दुआ कोई और है, तेरे देने पे मैं समझ गया कि तेरी रजा कोई और है। एक शेर देखिए, मुझे दे रहा था तबीब जो वो मेरे मर्ज की दवा न थी।
4: मेरे मर्ज की दवा,
2: मुझे दे रहा था
3: तबीब जो
2: वो मेरे मर्ज की दवा न थी, उसे उम्र भर न मगर कहा कि मेरी दवा कोई और है। मुझे दे रहा था तबीब जो वो मेरे मर्ज की दवा न थी, उसे उम्र भर न मगर कहा कि मेरी दवा कोई और है। एक शेर देखे कि मैं चला हूँ जिसकी तलाश में, वो मेरी नजर से है गुम अभी।
4: वो मेरी नजर से है गुम अभी।
2: मैं चला हूँ जिसकी तलाश में, वो मेरी नज़र से है घुम अभी। मैं हूँ ढूंढता किसी और को, मुझे मिल रहा कोई और है।
4: मुझे मिल रहा कोई और है।
2: मैं चला हूँ जिसकी तलाश में, वो मेरी नज़र से है घुम अभी। मैं हूँ ढूंढता किसी और को, मुझे मिल रहा कोई और है। मुझे कैसे आए यकीन भला मेरे चारागर तेरे प्यार पर।
3: मुझे कैसे
2: आए यकीन भला मेरे चारागर तेरे प्यार पर। तेरे लव पर बातें हैं और कुछ जो है वाकया कोई और है।
3: तेरे लव पे बातें हैं और
2: मुझे कैसे यकीन भला मेरे चारागर तेरे प्यार पर। तेरे लव पर बातें हैं।

0: और कुछ जो है वाकया कोई और
1: हम्म।
0: है, वो तो जिंदगी की तलाश था, तुझे क्या मिलेगा वैस वो।
1: वाह वाह
0: क्या
1: वाह
0: बात,
1: वाह,
0: वो तो
1: तुझे क्या
0: जिंदगी
1: जिंदगी
0: की
1: की
0: तलाश
1: तलाश था,
0: था, तुझे
1: तुझे
0: क्या
1: क्या
0: मिलेगा
1: मिलेगा
0: वैस
1: वैस
0: वो।
1: वो।
0: यहाँ सोग है किसी और का, चला गया कोई
1: आय
0: और है,
1: हाय,
0: जो
1: क्या
0: चला
1: बात,
0: गया।
1: सोग है
0: है
1: किसी
0: किसी
1: और
0: और
1: का।
0: का,
1: वाह वाह
0: वो
1: वाह
0: तो
1: वाह,
0: जिंदगी
1: बहुत
0: की
1: खूब,
0: तलाश
1: तलाश था।
0: था, तुझे क्या मिलेगा वैस वो। यहाँ सोग है किसी और का,
1: जो चला
0: जो
1: गया, जो
0: चला
1: चला
0: गया
1: गया
0: कोई
1: कोई
0: और
1: और
0: है।
1: है।
0: ये नहीं कि तुझको खबर ना हो, को मेरी दुआ कोई और
1: वाह,
0: है। तेरे देने पे मैं समझ
1: कि
0: गया कि तेरी
1: तेरी
0: रजा
1: रजा
0: कोई
1: कोई
0: और
1: और।
0: है।
1: वाह वाह वाह।
0: क्या

0: की तलाश था तुझे क्या मिलेगा वैस वो, यहाँ सोग है किसी और का,
1: जो चला गया
0: कोई और है। ये नहीं कि तुझको खबर ना हो को मेरी दुआ कोई और है, तेरे देने पे मैं समझ गया कि तेरी रजा कोई है।
2: क्या बात है दोस्तों, अभी आपने ओवैसी साहब से गजल सुनी है, बहुत खूबसूरत कलाम था इनका। और हम अगली दावत जो देने जा रहे हैं उस्ताद शायर अनवार आज़र साहब बुत तराश, अभी इनसे आप सुनिए और आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि क्या खूबसूरत गज़ल ये भी तराशते हैं। जी सर,
1: गज़ल का अतला आप मुलाहजा फरमाएँ।
3: अता कीजिए साहब।
1: कि जब से लहू की मौज को पानी बना लिया जब से लहू की मौज को पानी बना लिया, इस जिंदगी को रात की रानी बना लिया,
3: इस जिंदगी को रात की
1: रानी बना, और आंखें किसी की, होंठ किसी के, किसी की जुल्फ,
3: आंखें किसी की होंठ किसी के किसी की जुल्फ,
1: यूं हमने आखरस तेरा सानी बना लिया,
2: क्या कहने।
1: और जुल्फें गिरा के चांद से चेहरे पे जाने मन, जुल्फें गिरा के चांद से चेहरे पे जाने मन, तूने तो दिन को रात सुहानी बना लिया, जुल्फें गिरा के चांद से चेहरे पे जाने मन, तूने तो दिन को रात सुहानी बना लिया। और तारीफ हमसे क्या हुई शाखे गुलाब की,
3: तारीफ
1: हमसे क्या हुई शाखे गुलाब की, उस गुल बदन को दुश्मन जानी बना लिया, तारीफ हमसे क्या हुई शाखे गुलाब की, उस गुल बदन को दुश्मन जानी बना लिया।
3: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: उस चेहरे दिलवा से अगर दर्द भी मिला, उस चेहरे दिलवा से अगर दर्द भी मिला, हमने उसे किसी की निशानी बना लिया।
2: वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत शेर है। वाह वाह, दिलवा से,
1: उस चेहरे दिलवा से अगर दर्द भी मिला, हमने उसे किसी की निशानी बना लिया। आज़र ये फासले तो कोई बात ही ना थे, आज़र ये फासले तो कोई बात ही ना थे, जिन फासलों को तुमने कहानी बना लिया। आज़र ये फासले तो कोई बात ही ना थे, जिन फासलों को तुमने कहानी बना लिया, जब से लहू की मौज को पानी बना लिया, इस जिंदगी को रात की रानी बना लिया।
2: क्या कहने, क्या खूबसूरत गजल हम सबको सुनने को मिली है। और आप सभी दोस्तों से इजाज़त लेके मैं अब अपनी गज़ल एक पढ़ना चाहती हूँ। इजाज़त जी, मतलब देखिएगा कि किसी जर्रे को जैसे रोशनी उम्मीद देती है, किसी जर्रे को जैसे रोशनी उम्मीद देती है, मुझे वैसे तेरी मौजूदगी उम्मीद देती है।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। मुझे वैसे
2: शेर देखिए कि फिर उसके बाद का रास्ता बची सांसों से पूछेंगे,
1: फिर
2: उसके बाद का रास्ता बची सांसों से पूछेंगे, वहां तक चल जहां तक जिंदगी उम्मीद देती है। फिर उसके बाद का रास्ता बची सांसों से पूछेंगे, वहां तक चल जहां तक जिंदगी उम्मीद देती है। और मुझे तो आज तक भी गम तेरा ढारस बंधाता है।
1: क्या बात है।
2: मुझे तो आज तक भी गम तेरा ढारस बंधाता है, मुझे तो आज तक तेरी कमी उम्मीद देती है, मुझे तो आज तक भी गम तेरा ढारस बंधाता है, मुझे तो आज तक तेरी कमी उम्मीद देती है। और शेर है कि दुपट्टे के किसी कोने में जो एक गांठ बांधी थी, दुपट्टे के किसी कोने में जो एक गांठ बांधी थी, मुझे वो अभी तेरे नाम की उम्मीद देती है। और शेर है कि किन्हीं सहरा सिफत आंखों से जाकर पूछ लेना तुम, किन्हीं सहरा सिफत आंखों से जाकर पूछ लेना तुम, उन्हें तो उसकी एक बूंद भी उम्मीद देती है, उन्हें तो उसकी एक बूंद भी उम्मीद देती है। और आखिरी शेर मेरी गजल का के फकीरी रास जिनको आ गई हो कब ठहरते हैं,
3: फकीरी रास जिनको आ गई हो कब ठहरते हैं,
2: फकीरी रास जिनको आ गई हो कब ठहरते हैं, किसी से रुखसती उनको नहीं उम्मीद देती, फकीरी रास जिनको आ गई

0: हो
1: देती
0: कब
1: है।
0: ठहरते हैं, किसी से रुखसती उनको नई उम्मीद देती
1: देती
0: है,
1: है।
0: फिर उसके बाद का रास्ता बची सांसों से पूछेंगे, वहां तक चल जहां
1: यहाँ
0: तक
1: तक
0: जिंदगी
1: जिंदगी
0: उम्मीद
1: मालूम
0: है।
1: होती है। बहुत
0: वाह बहुत
1: खूब
0: शुक्रिया
1: वाह बहुत खूब
0: आप
1: रेनू
0: सभी
1: साहिबा।
0: दोस्तों का। और मैं अगला नाम जो लेने जा रही हूँ वो है आज के हमारे मेहमान खुसूसी
1: इज्जत
0: डॉक्टर जमील
1: मोहब्ब
0: अजीज साहब। ये MLA हैं और राजनीति में शायरी और शायरी में राजनीति का एक बहुत सुंदर जो एक गठबंधन है वो हमें आज यहाँ पे भी सुनने को मिलेगा। जी सर, आपकी गजल इरशाद।
1: गजल का मतलब पेशी खिदमत
0: जी
1: है।
0: इरशाद।
1: इरशाद इरशाद।
0: कोई
1: कोई महरम कोई हमदम नहीं है,
0: आहा हा
1: कोई महरम कोई
0: कोई
1: हमदम
0: महरम कोई
1: नहीं
0: हमदम
1: है,
0: नहीं
1: है
0: है,
1: कोई अपना शरीके गम
0: गम
1: नहीं।
0: नहीं
1: वाह
0: है।
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह, कोई
1: वाह।
0: अपना
1: कोई
0: शरीके गम नहीं,
1: महरम कोई
0: कोई
1: हमदम
0: हमदम नहीं है, कोई अपना
1: शरीके
0: शरीके
1: गम
0: गम
1: नहीं
0: नहीं
1: है,
0: है,
1: खुदा
0: वाह वाह वाह
1: शैतान से महफूज रखे।
0: रखे आहा,
1: खुदा
0: शैतान
1: शैतान
0: शैतान
1: से
0: से
1: महफूज रखे, मगर इंसान भी कुछ कम
0: कम
1: नहीं
0: हाय
1: है।
0: हाय, क्या बात है,
1: खुदा
0: वाह वाह वाह,
1: शैतान से महफूज
0: महफूज,
1: रखे,
0: क्या बात
1: मगर
0: है, मगर
1: इंसान
0: इंसान,
1: भी
0: क्या
1: कुछ
0: सच्चा
1: कम
0: शेर है,
1: नहीं
0: वाह वाह
1: है।
0: वाह वाह
1: हम उनको दफन करके लौट आए हैं,
0: आहा,
1: हम
0: हम उनको
1: उनको दफन करके लौट
0: लौट
1: आए
0: आए हैं,
1: हैं, बिछी अब तक सफे मातम नहीं है।
0: आहा,
1: लौट आए,
0: हम
1: उनको दफन करके लौट
0: लौट
1: आए,
0: आए,
1: बिछी अब तक सफे मातम नहीं
0: नहीं
1: है।
0: है,
1: किसी मफलूक की मैयत है शायद,
0: हाय हाय,
1: किसी मफलूक की मैयत
0: मैयत है
1: है
0: शायद,
1: शायद,
0: वाह
1: किसी की आंख भी पूर्णम नहीं
0: वाह
1: है।
0: वाह वाह
1: क्या
0: वाह
1: बात
0: वाह,
1: है,
0: क्या
1: किसी
0: कि मफलूक
1: मफलूक की
0: की
1: मैयत है शायद, किसी की
0: आंख
1: आंख भी
0: भी
1: पूर्णम
0: पूर्णम
1: नहीं
0: नहीं
1: है।
0: है।
1: जमाना हमसे टकराए तो कैसे, जमाना हमसे टकराए तो कैसे, जमाने में भी इतना दम
0: दम
1: नहीं
0: नहीं है,
1: है,
0: वाह वाह वाह,
1: जमाने में भी इतना
0: इतना
1: दम
0: दम
1: नहीं
0: नहीं
1: है।
0: है,
1: हमें तो साफ गोई की है आदत,
0: आदत
1: हमें तो साफ गोई की है आदत,
0: आदत
1: हमारी गुफ्तगू मुबहम नहीं
0: नहीं
1: है।
0: है, क्या बात है, क्या बात,
1: हमारी गुफ्तगू
0: मुबहम नहीं
1: मुबहम
0: है,
1: नहीं है। जमाना जिसे चाहे रौंद डाले, जमाना जिसको चाहे रौंद
0: रौन
1: डाले,
0: डाले
1: हमें मंजूर ये आलम नहीं
0: नहीं है,
1: है।
0: क्या कहने,
1: कोई महरम कोई
0: शरीक
1: हमदम नहीं
0: नहीं
1: है,
0: है,
1: कोई अपना शरीके
0: शरीके गम
1: गम
0: नहीं,
1: नहीं।
0: वाह
1: क्या
0: वाह
1: कहने हैं
0: वाह,
1: डॉक्टर साहब, बहुत
0: बहुत
1: खूबसूरत
0: खूब,
1: गजल। और आइए दोस्तों एक बार फिर से हम एक एक गजल और सुनते हैं अपने यहाँ से जो हमारे साथ शोरा हजरात हैं। तो मैं एक बार फिर से दावत दे रही हूँ उवैस ओवैसी साहब को कि अपनी ये गजल हमें ये
0: सुनाएं।
1: गजल का मतलब है ये
0: जी
1: कि जो
0: इरशाद।
1: ताक में दुश्मन थे पुराने निकल आए।
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह वाह।
0: वाह,
1: जो ताक में थे
0: जो
1: पुराने,
0: ताक में दुश्मन थे
1: दुश्मन थे
0: पुराने
1: पुराने,
0: निकल आए, उठे जो जरा लोग गिराने
1: गिरा
0: निकल
1: ले
0: आए।
1: निकल आए।
0: क्या
1: वाह
0: बात है,
1: क्या
0: क्या
1: बात
0: बात
1: है।
0: है,
1: जो ताक में दुश्मन थे पुराने
0: निकल आए,
1: निकल
0: निकल आए,
1: आए,
0: उठे जो
1: उठे
0: जरा
1: जो जरा लोग गिराने निकल
0: निकल,
1: आए।
0: क्या बात है,
1: और शेर देखिए, हमने कभी फुर्सत में कहाँ खुद को है रखा,
0: रखा
1: हमने
0: हमने
1: कभी फुर्सत में
0: फुर्सत
1: कहाँ खुद को है रखा, आया जो कोई काम कराने निकल
0: निकल
1: आए।
0: आए।
1: वाह
0: क्या
1: वाह वाह,
0: बात
1: क्या
0: है,
1: बाह।
0: क्या
1: ये
0: बात
1: तो
0: है,
1: जमीर
0: हमने
1: साहब
0: फुर्सत
1: के
0: में
1: बारे में लग रहा है वाह
0: शेर,
1: वाह क्या बात,
0: हमारे
1: ऐसा कह
0: MLA साहब के
1: सकते
0: बारे
1: हैं।
0: में।
1: ये
0: जी
1: हमारे
0: जी
1: MLA साहब की नज़र है,
0: जी
1: हमने
0: अदबी साहब
1: कभी
0: की
1: फुर्सत
0: नज़र,
1: में कहाँ खुद
0: खुद
1: को
0: को
1: है
0: है रखा।
1: रखा, आया जो कोई काम कराने निकल
0: निकल
1: आए।
0: आए।
1: और शेर देखिए, महफिल में शमा आग बनी जब हुई वारिद,
0: वाह,
1: महफिल में
0: महफिल
1: शमा
0: में
1: आग बनी,
0: आग
1: शमा
0: बनी,
1: आग
0: वाह वाह
1: बनी जब
0: वाह,
1: हुई वारिद, परवाने वहीं खुद को जलाने
0: जलाने
1: निकल
0: निकल
1: आए।
0: आए। वाह
1: क्या
0: वाह वाह,
1: बात है,
0: बहुत
1: वाह
0: खूब,
1: वाह
0: वाह
1: वाह,
0: वाह।
1: महफिल में शमा
0: शमा
1: आग बनी जब हुई वारिद,
0: परवाने
1: परवाने
0: वहीं
1: वहीं खुद को जलाने निकल
0: निकल आए।
1: आए।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: देती है जहाँ बैठ के माँ हमको दुआएं,
0: वाह
1: देती है जहाँ बैठ के माँ हमको दुआएं, उस घर से मुरादों के खजाने
0: खजाने
1: निकल
0: निकल आए। वाह
1: आए।
0: वाह
1: वाह,
0: वाह,
1: क्या बात है, क्या
0: देती
1: बात
0: है
1: है,
0: जहाँ
1: वाह,
0: बैठ
1: देती
0: के,
1: है जहाँ बैठ के माँ हमको दुआएं, उस
0: उस
1: घर
0: घर
1: से
0: से
1: मुरादों
0: मुरादों
1: के
0: के
1: खजाने
0: खजाने
1: निकल
0: निकल
1: आए।
0: आए। क्या
1: एक
0: कहने, वाह,
1: शेर देखिए, घर किसका जला ये नहीं पूछा कभी हमने,
0: वाह वाह वाह वाह,
1: वाह, घर
0: घर
1: किसका
0: किसका
1: जला
0: जला
1: ये नहीं
0: पूछा
1: पूछा कभी
0: कभी कभी
1: हमने,
0: हमने,
1: देखा जो धुआं आग बुझाने
0: बुझाने
1: निकल
0: निकल। वाह वाह वाह आए। क्या बात है,
1: वाह
0: क्या
1: वाह,
0: बात,
1: घर
0: क्या
1: किसका
0: बात,
1: जला ये
0: क्या बात
1: नहीं
0: है,
1: पूछा कभी
0: हमने
1: हमने, देखा जो धुआं आग
0: आग
1: बुझाने
0: बुझाने
1: निकल
0: निकल आए।
1: आए। इस आस पे रहता हूँ अवैस, उससे खफा मैं, इस आस पे
0: रहता
1: रहता हूँ
0: हूँ
1: अवैस, उससे खफा मैं, शायद वो किसी रोज मनाने
0: मनाने
1: निकल आए।
0: निकल।

0: क्या बात, वाह वाह
1: वाह।
2: शायद पे रहता हूँ अवैस उससे खफा मैं, शायद वो किसी रोज मनाने निकल आए।
1: वाह शुक्रिया,
0: बहुत शुक्रिया अवैस साहब। और इनकी शायरी में जो कैफियत है, जो इनके शेरों में कैफियत है, वो बहुत खूबसूरती से मुझे लगता है आप तक भी दोस्तों पहुंची होगी। हमारे साथ जो अगले शायर हैं वो हमारे उस्ताद शायर हैं अनवार आज़र साहब, बुत तराश उनके नाम से हम उनको जानते हैं। बुत तराश, शेर तराश, सुखन तराश। जी सर, आपकी ये गज़ल।
1: गज़ल के चंद अशआर मुलाहज़ा फरमाएं कि
3: इरशाद,
1: एक एक करके
3: एक एक करके
1: सारे पत्थर रख देते,
3: सारे पत्थर रख लेते,
1: एक एक करके सारे पत्थर रख देते, जो भी थे इल्जाम मेरे सर रख देते।
3: क्या बात है,
1: एक एक करके सारे पत्थर रख देते थे, रख देते जो भी थे इल्जाम मेरे सर रख देते। मजबूरी ने बांध दिया था वरना हम,
3: मजबूरी
1: ने बांध दिया था, मजबूरी ने बांध दिया था वरना हम फिर औनों के काट के लश्कर रख देते। मजबूरी ने बांध दिया था वरना हम फिर औनों के काट के लश्कर रख देते। और उसने जब मीज़ान में दौलत रखी थी, उसने जब मीज़ान में दौलत रखी थी, तुम भी थोड़ी गैरत ला कर रख देते। उसने जब मीज़ान में दौलत रखी थी, तुम भी थोड़ी गैरत लाकर रख देते। और प्यार कहीं से थोड़ा भी जो मिल जाता, प्यार कहीं से
3: थोड़ा भी जो
1: मिल जाता, बस्ती बस्ती जाते घर घर रख देते। प्यार कहीं से थोड़ा भी जो मिल जाता, बस्ती बस्ती जाते घर घर रख देते। और छुरी बगल में लेकर घर ना चलता वो, छुरी बगल में लेकर घर ना चलता वो, आस्तीन का हम भी खंजर रख देते। छुरी बगल में लेकर घर ना चलता वो, आस्तीन का हम भी खंजर रख देते। और प्यास भला क्या बुझनी थी दिल की आज़र, प्यास भला क्या बुझनी थी दिल की आज़र, चाहे इसके पास समंदर रख देते। प्यास भला क्या बुझनी थी दिल की आज़र, चाहे इसके पास समंदर रख देते। एक एक करके सारे पत्थर रख देते, जो भी थे इल्ज़ाम मेरे सर रख देते।
3: बहुत खूब,
0: क्या बात,
3: बड़ी मस्त गज़ल,
0: बहुत बहुत खूबसूरत गज़ल दोस्तों। अब मैं इजाज़त लेके आप सभी दोस्तों से अपनी भी ये गज़ल आपको जी, बहुत शुक्रिया। के मतलब है कि किसी की बात में आकर जो आना हो तो मत आना।
1: वाह,
0: किसी की बात में आकर जो आना हो तो मत आना, अगर जाने का पहले से बहाना हो
3: तो मत आना।
1: खूब है, खूब है।
0: किसी की बात में आकर जो आना हो तो मत आना, अगर जाने का पहले से बहाना हो तो मत आना। किसी दिन चाय पर आना तुम्हारा खैर मकदम है। किसी दिन चाय पर आना तुम्हारा खैर मकदम है, मेरे हालात पर जो रहम खाना हो तो मत आना। और मेरी आंखों की खामोशी तुम्हें बेचैन कर देगी,
3: मेरी आंखों की खामोशी तुम्हें बेचैन कर देगी,
0: मेरी आंखों की खामोशी तुम्हें बेचैन कर देगी, अगर कुछ बोलना सुनना सुनाना हो तो मत आना। और शेर है कि वो जिसके वास्ते सारे ताल्लुक ताक पर रखे, वो जिसके वास्ते सारे ताल्लुक ताक पर रखे, तुम्हारी राह में वही जमाना हो तो मत आना। और आखिरी शेर है मेरी गजल का कि तवक्को पर खरे उतरे ये अब मुमकिन नहीं होगा, तवक्को पर खरे उतरें ये अब मुमकिन नहीं होगा, हमें इस बार भी जो आजमाना हो तो मत आना। किसी की बात में आकर जो आना हो तो मत आना, अगर जाने का पहले से बहाना हो
3: तो मत आना,
0: तो मत आना। बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का, बहुत शुक्रिया। और आखिर में हम चलते हैं डॉक्टर जमील अजीज साहब के पास, जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं। अपनी ये गज़ल से हमें और
3: एक दो शेर पेशे खिदमत हैं।
0: जी इरशाद।
3: उनकी नजरे करम जब इधर हो गई,
1: वाह,

0: कर्म जब इधर हो गई, जिंदगी अपनी उनकी नजर हो
1: नजर
0: गई।
1: हो गई। वाह
0: उनकी नजरे कर्म जब इधर हो
2: वाह
0: गई,
2: वाह
0: जिंदगी अपनी उनकी नजर हो गई।
2: जी
0: तेरी शोहरत सनम इस कदर हो
1: हो गई।
2: गई,
0: तेरी शोहरत सनम इस कदर हो गई, जा बजा कू बकू दर बदर
1: नजर
0: हो
1: हो
2: गई।
1: गई।
2: क्या बात है, वाह वाह वाह,
1: वाह
2: क्या
0: गजल के चंद
2: खूबसूरत
0: अशआर पेशे खिदमत हैं।
2: इरशाद इरशाद
0: मतला समाप्त फरमाइए।
1: जी।
0: वो जो नहीं तो तन्हाई का रंग भी कितना गहरा है,
2: क्या
1: वो जो
0: वो जो
1: नहीं।
0: नहीं तो तन्हाई का रंग भी कितना गहरा है,
2: वाह
0: दीवारें खामोश हैं घर की, सन्नाटों का पहरा
1: पहरा
0: है।
1: है। वाह वाह
2: वाह
1: वाह
2: वाह वाह,
0: दीवारें खामोश हैं घर की,
1: सन्नाटों
0: सन्नाटों
1: का
0: का
1: पहरा है।
0: पहरा है। दिल के जख्मों का अंदाजा कब होता है चेहरे से,
1: क्या
2: वाह वाह
1: बात
2: वाह
1: है,
2: वाह,
1: वाह
0: दिल
2: क्या बात
0: के
2: है,
0: जख्मों का अंदाजा
2: कब होता
0: कब
1: है
0: होता है
1: चेहरे से,
0: चेहरे से, साहिल से क्या जान सकोगे दरिया कितना
1: कितना
0: गहरा
1: गहरा है।
0: है।
2: क्या बात है, वाह
0: साहिल से क्या
1: क्या
0: जान
1: बात,
0: सकोगे
2: दरिया
0: दरिया
1: कितना
0: कितना गहरा
1: गहरा।
0: है। उसने मेरी नींदें
1: नींदें लूटी,
0: लूटी, उसने ख्वाब चुराए हैं।
2: वाह वाह
0: उसने
2: वाह,
0: मेरी
2: नींदें
0: नींदें
2: लूटी
0: लूटी,
2: उसने खा
1: उसने
2: उसने
1: चुराए।
0: ख्वाब चुराए हैं।
2: वाह
0: सूरज मांद है जिसके आगे, चांद सा जिसका चेहरा
1: चेहरा है,
0: है।
1: वाह
0: क्या
1: वाह वाह
0: सूरज
1: वाह,
0: मांद है जिसके आगे,
2: चांद
1: चांद सा
2: सा
0: जिसका
1: जिसका
0: चेहरा
2: चेहरा है।
0: है। हिजर की रात न दस्तक देगी अब मेरे दरवाजे
1: दरवाजे पर,
0: पर,
2: वाह
0: हिजर की रात
1: न
0: न
1: दस्तक
0: दस्तक देगी अब
1: देगी,
0: मेरे दरवाजे पर, मेरे घर के आंगन में एक सूरज आकर ठहरा
1: ठहरे
0: है।
1: है।
0: है
1: वाह वाह
0: मेरे
1: वाह
0: घर
1: वाह,
0: के आंगन में एक सूरज
2: सूरज आकर
0: आकर ठहरा
1: ठहरे,
0: है।
2: वाह वाह।
0: गुजरे लम्हों को न पुकारो वो न पलट कर
1: आएंगे,
0: आएंगे।
2: क्या कहने, वाह,
0: गुजरे लम्हों को न
2: वो
0: पुकारो
2: ना पलट
0: वो
1: कर
0: न
1: आएंगे,
0: पलट कर आएंगे। वक्त किसी की कब सुनता
1: सुनता है,
0: है, वक्त तो गूंगा बहरा
2: हाय
0: है।
2: क्या बात
0: वक्त
2: है,
0: किसी
2: क्या
0: की
2: बात
0: कब
2: है,
0: सुनता
1: वक्त
0: है,
1: तो
0: वक्त
1: गूंगा
0: तो
1: बहरा
0: गूंगा
1: है,
0: बहरा
1: वाह
0: है।
1: वाह वाह वाह,
0: वो जो नहीं तो तन्हाई का रंग भी कितना गहरा
1: गहरा
0: है, दीवारें खामोश हैं घर की, सन्नाटों
1: सन्नाटों
0: का
1: का पहरा
0: पहरा है।
2: है, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। तो दोस्तों चलते चलते मुझे लगता है कि एक एक गज़ल और सुन लेनी चाहिए, तो मैं फिर से दावत दे रही हूँ ओवैस ओवैसी साहब को, अपनी एक गज़ल से हमें नवाजें।
3: एक गज़ल के चंद अशआर। गमों पे मुस्कुराने वाले क्या हुए,
0: गमों
3: गमों
0: पे
3: पे
0: मुस्कुराने
3: मुस्कुराने
0: वाले
3: वाले
0: क्या
3: क्या
0: हुए,
3: हुए,
1: हुए।
3: वो रोतों को हंसाने वाले
1: अरे
3: क्या
1: क्या
3: हुए,
1: हुए,
0: को हंसाने वाले क्या हुए।
3: गमों पे
0: वाह
3: मुस्कुराने वाले क्या हुए,
1: वो
3: वो
1: रोतों
3: रोतों को हंसाने वाले क्या
0: को क्या
3: हुए।
0: हुए।
3: खंडर मुसाफिरों से पूछते हैं अब,
1: खंडर
0: खंडर
3: खंडर मुसाफिरों
0: मुसाफिरों
3: से
0: से
3: पूछते
0: पूछते
3: हैं
0: हैं
3: अब,
1: अब खंडर मुसाफिरों से
3: से
1: पूछते
3: पूछते
1: हैं
3: हैं
1: अब,
3: अब, वो बस्तियां बसाने
1: बसाने
3: वाले
1: वाले
3: क्या
1: क्या हुए।
3: हुए।
2: वाह वाह वाह
3: खंडर मुसाफिरों से पूछते
0: पूछते
3: हैं
0: हैं
3: अब,
0: अब
3: वो
0: वो बस्तियां
3: बस्तियां
0: बसाने
3: बसाने
0: वाले
3: वाले
0: क्या
3: क्या
0: क्या
3: हुए।
0: हुए।
3: अतावतों के उस अंधेर शहर में, अतावतों के उस अंधेर
1: अंधेर शहर
3: शहर में,
1: में
3: चिराग वो जलाने वाले
1: क्या
3: क्या
1: हुए।
3: हुए।
2: वाह वाह वाह वाह,
3: अदावतों के उस
1: अंधेर
3: अंधेर
1: शहर
3: शहर
1: में
3: में
1: चराग
3: चराग
1: वो
3: वो जलाने वाले
2: क्या
3: क्या
2: हुए।
3: हुए। और आखिरी शेर देखिए, हकीकतों के दिन लिए खड़े हैं सब, हकीकतों
0: हकीकतों
3: के
0: के
3: दिन
0: दिन
3: लिए
0: लिए
3: खड़े
0: खड़े
3: हैं
0: हैं
3: सब,
0: सब।
3: वो ख्वाब से दिखाने वाले क्या
2: क्या
3: हुए।
2: हुए, ख्वाब से दिखाने
3: हकीकतों
2: वाले,
3: के दिन
2: वाह
3: लिए खड़े हैं
1: सब,
3: सब, वो ख्वाब से दिखाने
1: दिखाने
3: वाले
1: वाले
3: क्या
1: क्या
3: हुए।
1: हुए।
3: दो शेर और देख लीजिए गजल के। मतलाई चौखट पे किसी और की जाकर नहीं देखा,
0: वाह
1: वाह
0: चौखट में किसी
3: चौखट
0: और
3: पे
0: की
3: किसी और की
0: जाकर
3: जाकर नहीं
0: नहीं
3: देखा,
0: देखा।
3: एक दर के सिवा मैंने कोई दर नहीं
1: वाह
3: देखा,
2: वाह वाह वाह वाह,
3: चौखट पे किसी
1: किसी
3: और की
2: जाकर
3: जाकर
2: नहीं
3: नहीं
2: देखा,
3: देखा, एक दर के सिवा मैंने कोई दर नहीं
2: क्या
3: देखा।
2: कहने,
3: और शेर देखिए, अहबाब के फूलों पे नजर मेरी रही
1: यही
3: है,
1: है।
3: अहबाब
1: अहबाब
3: के
1: के
3: फूलों
1: फूलों
3: पे नजर
0: नजर
3: मेरी
0: मेरी
3: रही
0: रही
3: है,
0: है,
3: किस समत से आया कोई पत्थर नहीं
1: नहीं
3: देखा,
2: क्या
0: देखा।
2: कहने हैं,
0: वाह
2: वाह
1: वाह, किस सम से
3: अहबाब
1: आया
3: किस
1: कोई
3: समत से
1: पत्थर,
0: किस सम से
3: आया
0: आया
1: कोई
0: कोई
1: पत्थर
0: पत्थर
1: नजर
0: नजर
1: नहीं
0: नहीं
1: देखा,
0: देखा।
1: पत्थर नहीं देखा।
3: एक शेर है कि कुछ ऐसे तेरे हिजर के दिन काट रहा हूँ,
0: कुछ
3: कुछ
0: ऐसे
3: ऐसे तेरे
0: तेरे हिजर
3: हिजर के
0: के
3: दिन
0: दिन
3: काट
0: काट
3: रहा
0: रहा
3: हूँ,
0: हूँ
3: जैसे के कभी मैंने तेरा घर
1: घर
3: नहीं
1: नहीं
3: देखा,
1: देखा।
2: हाय हाय हाय, क्या कहने,
3: कुछ
1: कुछ
3: ऐसे
1: ऐसे
3: तेरे
1: तेरे
3: हिजर के दिन काट
1: घर रहा
3: रहा हूँ,
1: हूँ
3: जैसे के कभी मैंने

0: मेरा घर नहीं देखा, वो आखिरी शेर। ये सुन के अवैस उसकी शरारत पे हंसा मैं, ये सुन के अवैस
1: अवैस
0: उसकी शरारत
1: शरारत पे
0: पे हंसा
1: हंसा
0: मैं,
1: मैं।
0: मछली ने कहा मैंने समंदर नहीं देखा।
1: क्या बात है, क्या बात
0: ये
1: है।
0: सुन के अवैस उसकी शरारत पे हंसा मैं, मछली ने कहा मैंने समंदर नहीं देखा। बहुत शुक्रिया।
1: बहुत शुक्रिया आपका। और अब अनवार आज़र साहब से गुजारिश है कि अपनी एक और गज़ल हमें सुनाए।
2: मतलब देखिए कि
1: जी
2: दीवारों पर लिखना हमने छोड़ दिया,
1: वाह वाह
0: वाह,
1: दीवारों पर लिखना हमने छोड़
2: दीवारों
1: दिया,
2: पर लिखना हमने
1: छोड़
2: छोड़
1: दिया,
2: दिया, शेर किसी पे कहना हमने छोड़
1: शेर किसी पे
2: दिया,
1: कहना हमने छोड़ दिया।
2: दीवारों
1: बहुत
2: पर लिखना हमने छोड़
1: छोड़
2: दिया,
1: दिया,
2: शेर
1: किसी
2: किसी
1: पर
2: पे
1: कहना
2: कहना
1: हमने
2: हमने छोड़
1: छोड़
2: दिया,
1: दिया,
2: जो भी आदत थी सबकी सब वैसी है, जो
1: जो
2: भी
1: भी
2: आदत
1: आदत थी
2: थी
1: सबकी
2: सबकी
1: सब
2: सब
1: वैसी
2: सबकी
1: है।
2: सब वैसी
1: सी
2: है, छुप छुप कर हाँ मिलना हमने छोड़
1: वाह
2: दिया।
1: वाह
2: क्या बात
1: वाह,
2: है,
1: छुप
2: क्या बात है।
1: छुप
2: जो भी
1: छुप
2: आदत थी
1: कर हाँ
2: सबकी सब
1: मिलना
2: वैसी है, छुप छुप कर हाँ मिलना
1: हमने छोड़
2: हमने
1: दिया।
2: छोड़
1: शादी हो
2: दिया।
1: गई होगी ना उसके बाद।
2: रसमन सा बस थोड़ा झूठ मिलाते हैं,
1: रसमन सा बस थोड़ा झूठ
2: रसमन
1: मिलाते
2: सा
1: हैं,
2: बस थोड़ा झूठ
1: मिलाते
2: मिलाते हैं,
1: हैं
2: बेपर का वो उड़ना हमने छोड़
1: हम बेपर का
2: दिया।
1: वो उड़ना
2: क्या
1: हमने
2: बात
1: छोड़
2: है, क्या रसमन
1: बात
2: सा बस थोड़ा झूठ मिलाते
1: है।
2: हैं,
1: वाह वाह वाह,
2: बेपर का वो उड़ना
1: छोड़
2: हमने
1: हमने छोड़
2: छोड़ दिया।
1: दिया।
2: इकना एक मंजिल आंखों में होती है, इकना
1: इतना
2: एक
1: एक
2: मंजिल
1: मंजिल
2: आंखों
1: आंखों
2: में
1: में
2: होती
1: होती
2: है,
1: है,
2: बेमकसद का जीना हमने
1: हमने
2: छोड़
1: छोड़ दिया। क्या
2: दिया।
1: बात है,
2: क्या
1: अतः
2: बात है,
1: दोबारा
2: क्या
1: दोबारा
2: इकना एक
1: समझिए।
2: मंजिल आंखों में होती
1: होती
2: है,
1: है, वाह
2: इकना
1: वाह
2: एक मंजिल आंखों में होती
1: होती
2: है,
1: है,
2: बेमकसद का जीना
1: हमने छोड़
2: हमने
1: दिया।
2: छोड़ दिया। और सीधी सी आसान डगर अपनाते हैं,
1: सीधी सी आसान
2: सीधी
1: डगर
2: सी
1: अपनाते
2: आसान डगर
1: हैं,
2: अपनाते हैं, मुश्किल राहें चलना हमने
1: हमने
2: छोड़
1: छोड़
2: दिया।
1: दिया।
2: और दिल वालों से शायद ही अब मिलना हो,
1: दिल वालों से शायद ही
2: शायद ही
1: अब
2: अब
1: मिलना
2: मिलना हो,
1: हो,
2: गलियों गलियों फिरना हमने छोड़
1: हमने छोड़
2: दिया।
1: दिया। वाह वाह
2: दिल
1: वाह,
2: वालों से शायद ही अब
1: अब
2: मिलना
1: मिलना
2: हो,
1: हो,
2: गलियों
1: गलियों
2: गलियों
1: फिरना
2: फिरना
1: हमने छोड़ दिया।
2: हमने
1: बहुत
2: छोड़ दिया। और चांद वो बदरी से निकले या छुप जाए,
1: चांद वो बदली से
2: से निकले
1: निकले
2: या
1: या
2: छुप
1: छुप जाए,
2: जाए, आदर छत पर जाना हमने
1: हमने
2: छोड़
1: छोड़
2: दिया। आदर छत पर
1: दिया।
2: जाना
1: क्या
2: हमने
1: बात
2: छोड़
1: है,
2: दिया। चांद वो बदरी से निकले
1: या
2: या
1: छुप
2: छुप
1: जाए,
2: जाए, आदर छत पर जाना हमने
1: हमने
2: छोड़
1: छोड़
2: दिया,
1: दिया,
2: दीवारों पर लिखना हमने छोड़
1: छोड़
2: दिया,
1: दिया।
2: शेर किसी पे कहना हमने छोड़
1: क्या
2: दिया।
1: बात है, बहुत
2: वाह,
1: खूब,
2: क्या कहने,
1: बहुत
2: बहुत
1: खूबसूरत
2: खूब।
1: गजल
2: अब मैं अपनी ये गजल एक आप सबके
1: जी,
2: सामने,
1: अता कीजिए।
2: जी मतलब देखिए कि किसी सूरत कोई सागर निकालो,
1: किसी सूरत कोई सागर
2: किसी
1: निकालो,
2: सूरत कोई सागर निकालो, हमारी आंख का बंजर निकालो,
3: वाह वाह,
2: किसी सूरत
1: कोई
2: कोई सागर
1: सागर निकालो,
2: निकालो, हमारी आंख का बंजर निकालो, यकीन फिर से हुआ जाता है तुम पर,
1: यकीन फिर से हुआ जाता है तुम पर,
2: यकीन फिर से हुआ जाता है तुम पर, कोई तो आके मेरा डर निकालो,
1: कोई तो आके
2: वाह
1: मेरा
2: वाह,
1: डर
2: यकीन फिर
1: निकालो,
2: से हुआ जाता है तुम
3: तुम पर
2: पर, कोई तो आके मेरा डर निकालो,
3: निकालो,
2: तुम्हारी राह के गुल बोलते हैं,
1: तुम्हारी राह के गुल बोलते
2: तुम्हारी
1: हैं,
2: राह के गुल बोलते हैं, हमारी राह के पत्थर
3: पत्थर
2: निकालो।
3: निकालो,
1: हमारी राह के
2: और शेर
1: पत्थर
2: देखिएगा
1: निकालो,
2: कि सलीके से जो दुनिया देखनी है,
1: सलीके
2: सलीके
1: से जो
2: से जो
1: दुनिया
2: दुनिया
1: देखनी
2: देखनी
1: देखनी
2: है,
1: है,
2: तो अपनी आंख का कंकर निकालो,
1: वाह वाह वाह
2: सलीके
1: वाह,
2: से जो दुनिया
1: दुनिया
2: देखनी
1: देखनी
2: है,
1: है तो
2: तो
1: अपनी
2: अपनी
1: आंख का
2: आंख का कंकर
1: कंकर निकालो,
2: निकालो, ये देखो आसमां से जा लगा है,
1: ये देखो,
2: ये देखो
1: ये
2: आसमां से
1: देखो
2: जा
1: जा
2: लगा
1: लगा है,
2: है, तुम्हें किसने कहा था सर निकालो,
1: वाह
2: ये
1: वाह,
2: देखो आसमां से जा लगा है,
3: किसने
2: तुम्हें किसने कहा
3: कहा
2: था
3: था,
2: सर निकालो, कहानी से तो रुखसत कर चुके हो,
1: कहानी से तो
2: कहानी
1: रुखसत कर
2: से
1: चुके
2: तो
1: हो,
2: रुखसत कर चुके हो, अब अपने दिल से भी हंस कर निकालो,
1: क्या बात, क्या
2: कहानी
1: बात
2: से तो रुखसत कर
1: कर चुके
2: चुके हो,
1: हो,
2: अब अपने दिल से भी हंस कर
1: कर
2: निकालो।
1: निकालो,
2: और आखिरी शेर के मोहब्बत करके हमने देख ली है,
1: मोहब्बत करके हमने देख ली
3: देख लिया
2: है,
3: है,
2: मोहब्बत करके हमने देख
3: देख
2: ली
3: ली है,
2: है, चलो छोड़ो भी अब चौसर निकालो,
1: वाह,
2: मोहब्बत करके हमने देख ली है,
3: चलो
2: चलो
3: छोड़ो
2: छोड़ो
3: भी
2: भी
3: अब
2: अब चौसर
1: चौसर
2: निकालो,
1: निकालो,
2: किसी सूरत कोई सागर निकालो, हमारी आंख का बंजर निकालो। बहुत शुक्रिया दोस्तों, और इस प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में हम पहुंच गए हैं, तो एक बार और मैं डॉक्टर जमील अजीज साहब से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि अपनी एक और गजल अता करें।
1: जी मतलब पेशी
2: जी
1: खिदमत से
2: इरशाद।
1: बुझ गया किसकी उम्मीद।

0: उम्मीदों का दिया जलता हुआ बुझ
1: बुझ
0: गया,
1: गया।
0: किसकी उम्मीदों का दिया जलता हुआ, एक सन्नाटा है सारे शहर में छाया हुआ। एक फसाना हो गया मंसूब मेरे नाम से,
1: एक
0: फसाना हो गया मंसूब मेरे नाम से, खूब उनके हुस्ने दिल अफरोज का चर्चा हुआ।
1: क्या बात है,
0: खूब उनके हुस्ने दिल अफरोज का चर्चा हुआ। चल दिए महफिल से चुपके से वो आने पर मेरे, चल दिए महफिल से चुपके से वो आने पर मेरे, आबरू रख ली सितम करने चलो अच्छा हुआ। आबरू रख ली सितम करने चलो अच्छा हुआ। किस भरोसे पर नशेमन की बिना रखे कोई, किस भरोसे पर नशेमन की बिना रखे कोई, एक पल में जब उजड़ जाता है घर बसता हुआ। एक पल में जब उजड़ जाता है घर बसता हुआ। देखता रहता हूँ हैरानी में ता हद नजर, देखता रहता हूँ हैरानी में ता हद नजर, जाके रुकता है कहाँ सैलाब गम बहता हुआ। जाके रुकता है कहाँ सैलाब गम बहता हुआ। हादसे भी दम बखुद हैं मेरी जुरत पर अजीज, हादसे भी दम बखुद हैं मेरी जुरत पर अजीज, देख कर पहम मुझे हर हाल में हंसता हुआ। देख कर पहम मुझे हर हाल में हंसता हुआ। बुझ गया किसकी उम्मीदों का दिया जलता हुआ, एक सन्नाटा है सारे शहर में छाया हुआ।
1: क्या कहने हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का स्टूडियो मुशायरा। ऑल इंडिया रेडियो की जानिब से हम यहाँ इकट्ठे हुए थे, तो आप सबका, दोस्तों का बहुत शुक्रिया। उर्दू ऑल इंडिया रेडियो के सारे सामईन का बहुत बहुत शुक्रिया।
2: हुणे तुसी उर्दू मुशायरा सुन रहे सी पागलन वाले शायर सन डॉक्टर जमीलुर रहमान, मोहम्मद उवैसी, मोहम्मद अनवर आजार ते रेनू नैयर। आकाशवाणी का यह जलंधर केंद्र है। लोहुन समात परमाओ चंद गजलां। सब तो पहला मनहर उदास दी आवाज़ च एक गजल।

0: ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਾਈ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਏ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਤੇ ਰਾਤ 11:05 ਤੇ ਸੁਣੋਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਰਵੀ ਕਪੂਰ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के KGMC में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6 खासदार शिवसेना में शामिल हुए। इससे

0: कृष्णा की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
2: Every decision I've taken, मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
1: जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: महेश गर्ग, मंडी हरजीरा मलोड़ तो जी।
1: हाँ जी, थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है जी, की हाल चाल ने?
0: धन्यवाद जी, बहुत वधिया सर, थोड़े नाल गल करके बहुत वधिया हो सकेगा जी।
1: अरे सर, थोड़े जी श्रोता सानू जदों मिलदे ने जी, सानू बल्ले बल्ले हो जांदे, होर वधिया दिल करदा प्रोग्राम
0: हाँ
1: होण
0: जी,
1: दा।
0: परिवार है जी, एक अपना जी,
1: जी जी जी
0: सारा
1: जी जी जी जी असीं तो चाहते हैं कि साडे नाल ज़्यादा तो ज़्यादा लोग जुड़न, है ना जी, तो उन्होंने।
0: जी।
1: हैलो
0: हाँ जी, रात में जो सारा परिवार इकट्ठा होंगे ना जी, उदो फिर खुशी होंगी है
1: जी,
0: जी।
1: ए तुहाडी
0: ये
1: कॉल।
0: सारे आदे आदे कम्मां तो जाके आके परिवार घरे आके बह जाते हैं, सुगात प्रोग्राम विच सारे परिवार आए।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ते आई तुहाडी कॉल लगी है जी, किहड़ा गीत सुनना चाहोगे?
0: हंसराज हंस दा सुना जी, गोरियां गुलाब दियां गल्लां।
1: गोरियां गुलाब दियां गल्लां। ठीक है सर, ठीक
0: हाँ
1: है
0: जी,
1: जी, ते कॉल करने तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया जी, तुहाडी पसंद आ गई तद तक पहुँच। असीं कोशिश करांगे कि तुहाडा यही गीत प्ले करिए, ते नहीं ते फिर हंसराज हंस हुण आपां गीत सुणिआ ते कोई होर वी आपां गीत प्ले कर देंगे। कॉल करने लई बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगर तुसीं भी सानूं वट्सएप मैसेज करना चाहते हो तो साडा नंबर 9465536077, इस नंबर ते तुसीं अपना नाम लिखना जी, और उस तो बाद बेशक सारे अपने दोस्तों का नाम लिखो जिहड़े फरमाइश कर रहे ने गीत सुनना चाहते ने। उस तो बाद अपना पिंड ग्रां शहर लिखो, किहड़ा गीत सुनना चाहते हो, उस सिंगर का नाम, किहड़ी पिक्चर चो या फिल्म चो लिया गया, अगर हो सके तो वह दसो, या कोई होर निशानी जिहदे नाल कि आपां नूं गीत लभण च थोड़ी जी आसानी रहे। इस तो अलावा अगर तुसीं कोई छोटा मोटा मैसेज देना चाहते हो तो वह भी तुसीं जरूर जरूर लिखो, असीं उन्होंने भी जरूर शामिल करांगे। तो उन्होंने सेंड करना जी 9465536077 ते। लाओ हुण सुनदे हां जी प्रोग्राम सौगात दी अगली पेशकश। हंसराज हंस दा गाया हुआ एक पंजाबी गीत जिहदी फरमाइश सानूं गर्ग साहब ने हुणे हुणे फोन ते कीती है। इस गीत तो बाद मैं तुहाडी सेवा विच फिर हाजिर होणा जी।
2: सोने कुड़ी

प्रोग्राम सुगात पेश करदे करदे पता ही नहीं चलिया जी कदों प्रोग्राम समाप्ति वल नूं हो गया। घड़ी दी सुइयां इशारा कर रही हैं जी कि हुण बस एक ही गीत दी गुंजाइश रह गई है। तो लो जी तुहाडे तक पहुँच रहा है प्रोग्राम दी आखिरी पेशकश गुरदास मान दलजीत दोसांझ दा एक युगल पंजाबी गीत।

कोल कुमाई लालना गुरमंदीना, सुन सबद तुम्हारा मेरा मन पीना। प्रभु दा शब्द ब्रह्म है, शब्द तुनात्मक भी है ते वर्णात्मक भी, शब्द गुरु है ऐसा बाबा नानक जी ने फरमाया सी। शब्द गुरु सुरत तुन चेला, जदों इंसान दी सुरत प्रभु दे शब्द विच तुर अंदर तक प्रवेश कर जांदी है, अर्थात उसकी सुरत अते मन प्रभु दे शब्द दे अनुसारी हो जांदे ने तां प्राप्ति हो जांदी है। अज्ञानता दा हनेरा मनफी हो जांदा है, शब्द दे नाल ज्ञान दा प्रकाश हो जांदा है, इंज महसूस हुंदा है। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर बिनास, हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन प्रगास। दरअसल सच्चा गुरु दीपक गुरु है, गुरु दा शब्द ऐसा दीपक है जिस दे उजाले दे नाल अज्ञानता दा हनेरा बिनस जांदा है, मन मंदर दे द्वार खुल जांदे ने, मानो रत्ना दी कोठड़ी खुल जांदी है ते अनूप प्रभु दे दर्शन दीदार हो जांदे ने। ऐसा राग बिलावल महला पंजवां चौपदे दुपदे कर सतवां सिरलेख अधीन उचारी गई बाणी च फरमाया गया है। सतगुर शब्द उजारो दीपा, बिनस्यो अंधकार ते मंदर, रतन कोठड़ी खुली अनूपा। सरवण करदे हां डॉक्टर गुरनाम सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

0: सतगुर सबद उजारो दीपा, बिन सेव अंधकार तेह मंदर, रतन कोठड़ी खुली अनूपा। इस शब्द दा गायन कीता सी डॉक्टर गुरनाम सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी राग गौड़ी च उचारी गई एक रचना च गौड़ी महला पहला दखणी सिरलेख अधीन उचारे गए शब्द च फरमाउंदे ने कि सच्चे गुरु दी यही सिख्या है, अकाल पुरख पासों सच्चे नाम दी दात प्राप्त करके तन ते मन सीतल हो जांदे ने, ते मन इस तरह निर्लेप हो जांदा है जिस तरह जल दे विच कमल निर्लेप रहिंदा है। प्रभु दे शब्द विच रत्या मन ईख भाव गन्ने दे रस दी न्याई मिठा हो जांदा है। बाबा नानक जी फरमाउंदे ने, सबद रते मीठे रस ईख। सुनदे आ कमलजीत कौर होरां पासों ए वार्ता।
1: सबद तो भाव गुरु द्वारा उच्चारण कीता सबद जा बाणी, रते भाव प्रेम वाले। बाणी ओ है जो असी मूहों बोलदे हाँ, बोल के अपनियां भावनावां नूं दसदे हाँ। गुरबाणी गुरु दी है, गुरु दा बोल है, गुरु मिठ बोलड़ा है ते उस दी बाणी मिठी है। सारे गुना नाल भरपूर आत्मक जीवन देन वाला परमात्मा किसे दी काल कमाई नूं बिरथी नहीं जान देंदा, मेहनत दी कदर करदा है। इसे लई किसे नाल कूड़ा बोलदा ही नहीं, सब दियां भावनावां दी कदर करदा है, मिठ बोलड़ा है। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हो संभल थक्की जी ओ कदे ना बोले कौरा। गुरु दी सच्ची सिख्या प्राप्त करके शांत मन ते शरीर सदा थिर रहन वाले प्रभु नू पछाण लैंदे हन। वाहिगुरु नाल इस तरह प्रीत पै जांदी है जिवें कमल दी पानी नाल है। परमात्मा दे रंग विच रंग के मिठे गुण गान नाल हर थां आदर मिलदा है, ढोई मिलदी है। मीठे हर गुण गाओ जिंदू तू, मीठे हर गुण गाओ, सच्चे सेती रतियां मिलिया निथावें थाऊं। मिठास अर्थात निमरता सारे गुना अते चंगियाईयां दा तत् है। जुबान दी मिठास दा गुण धारण करन लई निर्माणता अते प्यार गुना ते चंगियाईयां दा तत् है। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईयां तत्। परमात्मा ने अपने रहन लई मन नूं सोना घर बनाया है। प्रभु प्रेम दे रंग विच रंगे मनुख दी गुरु दी किरपा नाल परमात्मा नाल सुरत जुड़न ते जीवन दाते नाल मिलाप होन ते अपने आप ही दिन रात अंदरों परमात्मा दा नाम उचरदा रहंदा है। कुराहे प्या चंचल गवार लोभी मन परमात्मा दी बख्शिश नाल गुरबाणी दे मिठे बोलना राही आत्मक जीवन देन वाली सिफत सलाह दी बाणी नाल जुड़ जांदा है। मिठा बोले अमृत बाणी आंदिन हर गुण गाओ, निज कर वासा सदा सोहदे नानक तिन मिलिया सुख पाओ। जुबान नाल बुरे बोल बोलन नाल सालां दी बनी हुई प्रीत टुट जांदी है।

मेरा मन शब्द लगो गुर मीठा, खुल्यो करम पयो परगासा, कट कट हर हर डीठा। इस शब्द गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह जख्मी ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

माया मत कहां लो गारो, शतर न पतर न चौर न चावर, बहती जात हृदय ना विचारो, रथ ना सो न गज सिंघासन।

हर सर्व रो खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्ण बिनस जाहे हर नाम उच्चारी इशनान दान तापन सुच किरिया चरण कमल हृदय प्रभ तारी साजन मीत सखा हर बंद जी।

प्रेम रस चरण कमल संग दामन बंध्यो न जात विदे मन दर्स मग पावक जर्यो न जात रहो जन तूर लग नीर न साक्ष बोर चले हर पंथ पग नानक रोग दोख अग मोह सिदे हर नाम खग उद्यम कर लागे बहु भाती बिचरे अनेक साहित्र बहु खटुआ भसम लगाए तीर्थ बहु भ्रमते सूखम देह बंदे बहु जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत ज्यो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पाका अनेक भांत थाटे कर थटुआ।

द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उग्र सैन को राज अपै भगते जन दियो कलयुग परमाने नानक गुर।

कर कृपा प्रभ साध संग मिले जा फिर देखा ता मेरा अल्लाह बेले वाट हमारे खरी उडीनी खन्या हो तिखी बहुत पीनी उसियो पर मार्ग मेरा शेख फरीदा पंथ समार सवेरा वाट हमारी खरी उड़ीनी खन्या हो तिखी बा

पंथ समार सवेरा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सूही बाणी शेख फरीद जी की। तप तप लोहे लोहे हाथ मरोरा बावल होई सो सहलोरा। तै सह मन मह किया रोस मुझ अवगन सह नाही दोष।

देग हाजर हैं, दारू परवान होवे परवान होया प्रसाद, संगत विच बरताउन दी आग्या बख्शां, सुख होवे नाम चित आवे, सिखां पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन, नानक नाम चढ़दी कलां, तेरे पाने सरबत दा भला। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।